0: पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएँ डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहाँ भी महिलाएं काम कर रही है वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझ कर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि।
0: नमस्कार, मैं RJ अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 FM ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर, और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई, आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय, और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा जो है लालची हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है, क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी। हमारे किसान भाइयों के लिए हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें, जो कि आज का हमारा विषय है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
11: जी धन्यवाद।
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
11: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। खास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
0: जी,
11: जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूलगोभी में ज़्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं, और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
11: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: जी जी।
11: वो चाहे कोई भी फसल हो, तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है, और पछेती फूलगोभी भी आती है। अच्छा। तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है, सबौर अग्रिम।
0: अच्छा,
11: तो इसी के इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी 2 है, पंत गोभी 3 है। तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगा कर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड 2 है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज़ हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी माघी आती है, जाइंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज़ हैं जो हम पछेती मौसम में लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
11: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
0: अच्छा।
11: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपके खेत के हिसाब से कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
0: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
11: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूल गोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
0: अच्छा।
11: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
0: अच्छा।
11: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
0: अवशेष,
11: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
0: जी।
11: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं, उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए। और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है, वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं। अच्छा। सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए, और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और जरूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज किसान भाइयों को जानना जरूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
0: अच्छा।
11: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है,
0: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
11: जी। अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
0: होती है,
11: बढ़ जाती है। तो इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया, और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी, और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए, डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए।
11: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम हाँ। और पछेती। तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज्यादा होती है।
0: अच्छा।
11: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में मुख्य खेत में डालना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
11: और इसके अलावा जो एक खरपतवार जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो

0: अपने 45 दिनों के बाद मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस के लिए, जो हम फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फास्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
0: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
0: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
1: है
0: वो फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है, उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका रंग ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
1: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो

0: करते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
1: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कन्फ्यूज़ करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में दो तीन तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
0: अच्छा।
1: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: जी।
1: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किसमें उगाएं, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर व्हिपटेल।
0: अच्छा।
1: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। व्हिपटेल होता है एक मॉलिबिडनम की कमी से।
0: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं व्हिपटेल?
1: हाँ, व्हिपटेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता।
0: अच्छा।
1: है तो उसको व्हिपटेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहाँ की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
0: अच्छा।
1: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
0: अच्छा।
1: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूल गोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
0: नुकसान पहुंचा,
1: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, अच्छा। या तो फॉर्मेल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उसे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें उसके अंदर, बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आई इसमें जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर होंगी, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
5: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवा सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशु पालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
3: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
3: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालू से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
3: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओ, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
3: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओ, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
3: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
3: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं, लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
2: अच्छा, तो ये बात है?
3: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्योशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
2: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
3: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
2: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
3: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
2: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
3: और फिर ट्रेन आती है।
2: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
3: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
2: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
3: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
2: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
3: वाह, बहुत सुंदर बात। विमलेश जी, मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है,
2: जी
3: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
2: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यू शेराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
3: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
2: अजीत जी, वो संदेश है बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
3: जी हाँ मित्रों, ना जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
2: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
3: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
2: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
3: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओं, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
2: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
3: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
3: माला की चांदी की पायल।
4: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
5: अरे माला तू।
4: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
6: बहन जी, डाकिया।
4: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
7: माला, यह तुम्हारे लिए है।
4: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
8: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: 2 मैं शरद हूँ
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे कैसे?
8: अरे जोर से मारना।
7: सैम, है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम, है ना? क्या तुम लोग तैयार हो?
8: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
7: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग। कैसा प्रयोग? आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
8: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
7: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
8: अच्छा
7: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
6: अच्छा।
7: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
8: हाँ, ठीक है।
7: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
6: घंटी भी?
7: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
9: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
7: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
9: हाँ हाँ,
7: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
9: हाँ हाँ, भेजो। हाँ। जल्दी भेजो।
8: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात
9: है। मार्कोनी, क्या क्या बात है।
8: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है। अरे वाह,
7: सिग्नल मिला।
8: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
3: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार, यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
4: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है।

0: रॉड, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: वाह, वाह, रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है,
0: वाह, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: वाह।
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो, डेक की ओर भागो।
6: क्या हो गया?
7: अरे ये क्या हो रहा है, जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
6: शांत हो जाइए,
7: शांत हो जाइए।
8: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
9: हेड पर कितनी बड़ी धार पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर रहा है।
0: जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
10: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेड लाइट सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्पैच।
8: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नावों के नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
11: Gentlemen, gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं
3: होता। मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
6: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा
3: हूँ। गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: Very good.
7: Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good.

20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।

0: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
7: कौन सी कहानी टीकी?
6: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।

0: के साथ टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है, और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: नमस्कार।
12: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है?
13: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है, आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है, इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है, एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा, एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और

0: की फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
0: 1 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
0: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीज उपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थीरम है, थीरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे। ये इसमें 80 केजी नाइट्रोजन एवं 20 केजी पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई पिंक बोरर तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगाध प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है, और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पे हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुँचाएँ वहाँ पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड अमेरिका इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है BU सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?
1: जी ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने मैम कि प्राकृतिक खेती क्यों आन पड़ी है, क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि आज हम जितना चीज़ हम खा रहे हैं वो एक तरह से रसायन से उत्पाद किया हुआ है और वो कहा जाए तो एक जहर है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जहर है। और जहर ये आया कहाँ से? तो जहर आने का मतलब कई कारण है। पहला कारण है कि हम रसायन जो डाल रहे हैं वो मिट्टी में डाल रहे हैं और मिट्टी में हमारा जितना फसल है वो मिट्टी से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि आज चाहे वो गरीब तबके के हो या बहुत बड़े घराने से हो, वो बीमारी को बेच नहीं सकता और अपने स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम। तो प्राकृतिक खेती है अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, खुद आने वाले जो पीढ़ी है उनको बचाने के लिए इसलिए ज़रूरत है।
0: तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिससे जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
1: देखिए रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुन प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते। अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। अगर बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लिया जी वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज़्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज़्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज़्यादा, वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज़्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है। और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है, जो कि हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए जरूरत है।
0: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं।
1: जी
0: तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
1: देखिए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है। ये हमारे पुराने पद्धति है जो कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो कि गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे चीज़ को जो है ये जब से ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा बड़ा संसाधन होता था उनमें वो व्यवस्थित करके रखते थे, जो कि अपना ही बीज से वो उत्पाद लेते थे और शुद्ध लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज डंकल प्रस्ताव जब से आया अपने देश में, उनके बाद हमारे देश की कृषि में तो बहुत ज़्यादा मतलब उपज आया, इतना आया कि हम विदेशों को भी दे रहे हैं। लेकिन परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो, तो देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं, तो घी ये दही भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को जब हम अपने खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होते हैं, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा। मैम
0: बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना। तो सर इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पर पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
1: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो हमारा सारा चीज स्वस्थ हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर हम रसायन डाल दिए वहाँ के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा, यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे, इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा। मैम तो वो बढ़ेगा कैसे, तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ठीक है, तो जीवामृत कहाँ से आएगा, तो जीवामृत का घर कहाँ है, तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में। और वो मिट्टी कहाँ है जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। अब रसायन कहाँ नहीं डाले हैं, तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं, और वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का सॉइल जीवित है, उसमें अभी भी जीवाणु करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद है। वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले और गाय का मूत्र और बेसन गुड़ ये छोटा छोटा सामग्री है जो कि हम जीवामृत के रूप में बना के मिट्टी में डालते हैं, तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
0: तो सर आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा, तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन पर टिके हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो एकाएक आप रसायन को अगर हटा के प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाते हैं तो पहला ईयर में आपका कुछ उत्पाद घटेगा, इसलिए कि उस मिट्टी को रसायन की आदत पड़ गई है। एकाएक अगर हम रसायन को हटाते हैं तो हमारा उत्पाद कुछ घटता है, लेकिन अगर हम लगातार इस पर 3 साल काम करेंगे तो दूसरा ईयर क्या होगा कि हमारा उत्पाद लेवल में आएगा, तीसरा ईयर मेरा वो उत्पाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आप उस इनपुट को जो आप प्राकृतिक खेती के तहत बनाते हैं उनको डालते जाएंगे और फसल चक्र को अपनाएंगे तो आपका उत्पाद घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैम ये है कि आपके फसल में लगने वाले लागत बहुत कम आएगा, क्योंकि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका डीएपी के रूप में घन जीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पर्सन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
2: ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जिन मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा लेकिन बाद में वो चीजें हो जाती है मैनेज, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए।
1: थैंक यू मैम।
2: दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
10: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
11: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
10: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
15: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
15: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
15: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
15: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउन डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउन डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है, और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
14: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
15: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
14: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
15: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 2 बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से 1 बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
14: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
15: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविच या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
14: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
15: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
14: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
9: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो

0: चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें या किसी के विजय होने की अवस्था में करें या किसी के जन्म की बात करें या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफ़ी उपलब्ध है इसके लिए।
1: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
0: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों के गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार की डिमांड पे, मांग पर इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
1: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
0: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पुसा अर्पिता है, पुसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बेंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं तो उनके पास अपना पौधा रहेगा और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए, बालू की मात्रा रहनी चाहिए, क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है, अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं, एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
1: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
0: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6-7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उससे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ा

0: ना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है। 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं, तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4 × 4 = 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है, और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है, और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर, 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करें, नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें
1: जी।
0: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की, तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है। लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं, और सबसे बड़ा कमजोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में, कि यहाँ का जो बाजार है, भागलपुर का जो बाजार है, फूलों का बाजार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है, तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाजार पर कलकत्ता के ही बाजार का कब्जा था, और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है, लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा बाजार पे भी, उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा, और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है
1: जी। मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें। क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है, और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसकी लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है, और वो अरका भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र। और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
1: जी मैम,
0: और वो उसको करना प्रारंभ करने, और पैसे की कमी नहीं है इसमें
1: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए, और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाज़ार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए, और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए, और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू उमा।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,
3: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
9: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू 8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: Then repeat the twist on the other side. The image explaining this step is given on the left side of this text. Vishranti. Slowly return to the center and relax in Makarasana. The image explaining Vishranti is given below this text. Benefits of practicing this asana. 1. It strengthens abdominal organs. 2. It helps relieve back pain. Notes for the teacher. Before practicing this asana, it is important to perform preparatory exercises such as Gatyatmak Meru Vakrasthiti, Bhu Namana, and Chakki Chalana. Practice Shashankasana as a complementary posture. Page number 162. 11. Matsya Asana. The word Matsya means fish, and here in the final posture, the body resembles a fish. The image explaining Matsya Asana is given on the left side of this text. Prarambhik Sthiti. Sit down in Padmasana with your arms placed by the side of the body. The image explaining Padmasana is given on the left side of this text. Step 1. Slowly bend backwards, taking the support of the forearms and elbows. The image explaining this step is given on the right side. Step 2. Gently lift the chest and place the crown of the head on the ground as given in the picture below. Hold the big toes with each hand and rest the elbows on the floor. Maintain this posture for a few seconds with normal breathing. The image explaining step 2 is given at the bottom of this page. Page number 163. Step 3. To release the posture, lift the chest and head up with the support of the elbows. The image explaining step 3 is given below this text. Vishranti. Release the legs and relax in Shavasana. The image explaining Vishranti in Shavasana is given below this text. Benefits of practicing this asana. 1. It enhances deep breathing. 2. It regulates the functioning of the thyroid gland. Notes for the teacher. Before practicing this asana, it is important to perform preparatory exercises such as Gatyatmak Meru Vakrasthiti, Bhu Namana, and Chakki Chalana. Practice Sarvangasana as a complementary posture. Page number 164. Simha Garjan Asana. The word Simha means lion. Garjana means roaring. Here in the final posture, the body resembles a lion with an open mouth and tongue stretched out. The image explaining Simha Garjan Asana is on the left side of this text. Prarambhik Sthiti. Sit in Dandasana and then slowly adopt Vajrasana. The image explaining Prarambhik Sthiti is on the left side of this text. Step 1. Keep about 2 feet of space between the knees. Lean forward and place the palms on the floor between the knees. Fingers pointing towards the body. Keep the arms straight, back arched, and support the body's weight on the arms. Tilt the head back. Keep the eyes open and gaze at the eyebrow center. The image explaining this step is on the left side of this page. Step 2. Breathe in slowly through the nose. Then open your mouth wide. Stretch the tongue out fully and exhale slowly while making a clear ah roaring sound from the throat. Close the mouth after exhaling. Repeat this roaring sound 5 times. The image explaining this step is at the bottom right of this page. Page number 165. Vishranti. Come back to Vajrasana. Release the legs and relax in Shithil Dandasana. The image explaining Vishranti is at the top right of this page. Benefits of practicing this asana. 1. It helps in developing a strong and beautiful voice. 2. It is beneficial for speech-related problems. Note for the teacher. Before practicing this asana, it is important to perform preparatory exercises such as Jang Shakti Vikasaka, Pad Sanchalana, Shroni Chakra Chalana, Ardh Titli Sthiti, Gulf Chakra Chalana and Gulf Namana. Page number 166. Relaxation technique. After completing the asana session, it is important to practice relaxation. The Shavasana is commonly used for this purpose. In addition to the Shavasana, we will also learn another relaxing posture called the Matsya Kridasana, which can be practiced along with it. The image describing Matsya Kridasana is given at the middle of this page. Steps. 1. Lie down on the stomach. 2. Place the right arm under the head and rest the right cheek on it. 3. Bend the left leg sideways, bringing the knee close to the ribs. 4. Interlock the fingers of both hands, keeping the hands in front as given in the picture above. 5. Rest the left elbow on the bent left knee. 6. Keep the right leg straight and relaxed. 7. Breathe normally and remain in this position, allowing the body to relax. 8. After some time, change the side and repeat the steps. Page number 167. Pranayama. Breathing practice. Let us first look at the asanas learnt in the previous grades. Straw breathing. 1. Sit or stand comfortably. Relax the whole body. 2. Inhale slowly and deeply through the nose for 4 seconds, letting the stomach expand. 3. Now place a straw with a small diameter between the lips. In the absence of a straw, keep the lips closed with a small gap in between, as if about to blow out a candle. 4. Exhale slowly through the straw or through the small gap in between the lips. Repeat this process for 5 minutes. Focus on slow exhalation. The image explaining straw breathing is given on the top right of this page. Note for the teacher. Benefits of straw breathing. Calms the nervous system, reduces stress and anxiety, and increases lung capacity. Page number 168. Let us look back at the breathing practices you have learned in grades 3 and 4. Various images of breathing practices are given at the top of this page. First is breathe awareness. Second one is deep breathing. Third is Anulom Vilom Pranayam. And fourth is Bhramari Pranayam. As you know, Pranayam is the fourth limb of Ashtanga Yoga. It means learning to regulate our breath. Now think, why is it important to regulate our breath? In yoga, it is said that when we slow down our breathing and take deep, calm breaths, it helps us control our mind from too many thoughts. This makes it easier to focus and think clearly, helping us improve our concentration. We will begin our pranayam practice with a revision of Anulom Vilom Pranayama. Page number 169. 1. Anulom Vilom Pranayama. Steps. Step 1. Sit in Sukhasana or Padmasana with the head upright, back straight and eyes closed. Step 2. Use the right hand to form Nasika Mudra as given in the picture on the right side, while keeping the left hand on the left thigh in Chin Mudra. Step 3. Gently close the right nostril with the right thumb and inhale slowly through the left nostril. Step 4. Close the left nostril using the ring and little fingers, then exhale through the right nostril. Step 5. Now inhale through the right nostril, then close it and exhale through the left nostril. The image explaining Anulom Vilom Pranayama is given on the middle right of this page. This completes one round. Repeat the process for 5 rounds. 2. Ujjayi Pranayama. Steps. Step 1. Sit comfortably in Padmasana with the back straight. Step 2. Place the hands on the knees in Chin Mudra. The image explaining Chin Mudra is given on the bottom right of this page. Page number 170. Step 3. Close the eyes and relax the entire body. Step 4. Breathe in deeply through both nostrils. Step 5. Gently constrict the throat and inhale, creating a soft sound like breathing in through a thin straw. Step 6. After a full inhalation, close the right nostril using the right thumb and exhale through the left nostril, maintaining the throat constriction to produce a gentle snoring sound. Step 7. Repeat this process for 5 rounds, then relax. 3. Sitkari Pranayama. Steps. Step 1. Sit comfortably in Padmasana with the back straight. Step 2. Place the hands in Chin Mudra. Step 3. Close your eyes and relax the entire body. Step 4. Gently press the teeth together and keep the lips separate. Inhale through the gaps between the teeth, creating a soft hissing sound. Notice the cool sensation in the mouth. Step 5. Close the lips and exhale slowly through the nostrils. Step 6. Repeat this process for 5 rounds, then relax. The image explaining Sitkari Pranayama is given on the right side of this page. Page number 171. 3. Sheetali Pranayama. Steps. Step 1. Sit comfortably in Padmasana with the back straight. Step 2. Place the hands on the knees in Chin Mudra. Step 3. Close your eyes and relax the entire body. Step 4. Roll the tongue inward to form a tube or a beak shape. Step 5. Inhale slowly through the beak, feeling a cool sensation in the mouth. Step 6. Close the mouth and exhale slowly through the nostrils. Step 7. Repeat this process for 5 rounds, then relax. The image explaining Sheetali Pranayama is given on the top right of this page. Note for the teacher, the benefits and contraindication of the practices will be taught in higher classes. The teacher must make sure that the students are practicing these techniques without any mistakes. Page number 172, Hast Mudra. In continuation to what we learnt in the previous grade, this year we will learn and practice a few more mudras together. 1. Pran Mudra. Steps. Step number 1. Sit in Padmasana. Step 2. Place the hands on your knees. Touch the tips of the ring finger and little finger to the thumb. The index and middle finger should be pointed straight. Step 3. Keep your eyes closed and focus on your breathing. Step 4. Hold this posture for 5 minutes. Benefits: practicing the prana mudra helps energize the body and brings a sense of calmness to the mind. Activity: practice prana mudra daily for a month under the guidance of a teacher. Maintain a journal to record any observed changes in energy levels and the state of mind. An image explaining prana mudra is given on the top right of this page. Page number 173. 2. Apan mudra. Steps. Step 1. Sit in Padmasana. Step 2. Place your hands on the knees. Touch tips of the middle and ring finger to the thumb. The index and little finger should be straight. Step 3. Keep your eyes closed and focus on your breathing. Step 4. Hold the posture for 5 minutes. An image explaining Apan Mudra is given on the top right of this page. Benefits: practicing the Apan Mudra improves digestion and helps reduce problems such as constipation and abdominal pain. Activity: do Apan Mudra whenever you have abdominal problems like stomach pain, gas or constipation with the teacher's help. Maintain a journal to note down any changes that you notice. 3. Prithvi Mudra. Steps. Step 1. Sit in Padmasana. Step 2. Place the hands on the knees. Touch the tip of the ring finger to the tip of the thumb. The remaining fingers are kept open. The image explaining Prithvi Mudra is given on the right side. Page number 174. Step 3. Keep the eyes closed and focus on the breath. Step 4. Hold the posture for 5 minutes. Benefits: practicing the Prithvi Mudra helps to overcome laziness and increases energy levels in the body. Activity: practice the Prithvi Mudra every day for 5 minutes. Maintain a journal to note any changes observed after practicing. Kriya: Bindu Tratak. As a part of Kriya, which means cleansing techniques, we shall learn Bindu Trataka, a procedure to cleanse the eyes, as well as a preparatory procedure for Dharana. Bindu Trataka means staring at a small dot without blinking. An image explaining Bindu Trataka is given on the right side. Benefits of this practice: it helps to improve focus, memory and concentration. Page number 175. Steps. Note: remove your spectacles and wristwatch before getting started. Step 1. Draw a small black dot of about 1 cm diameter at the center of an A4 size sheet white paper. Step 2. Sit in Sukhasana and place the dot on a wall. The dot should be about 2 to 3 feet away at eye level. Each child will have one dot to focus at. Step 3. Look at the dot without blinking for 30 seconds to 1 minute. Step 4. When the eyes feel a little watery, close them and try to visualize the dot in your mind. Step 5. After a few seconds, rub the two palms, generate sufficient heat and gently place them on the closed eyes for half a minute. feel the warmth of the palms. This process is called palming, which reduces the eye strain. Repeat the entire procedure 2 to 3 times along with palming. Note for the teacher, encourage the children to practice Bindu Tratka at home every day in the morning. Page number 176, Dhyana, Om Dhyana. After completing the Bindu Tratka, continue with Om Dhyana. Step 1, sit comfortably in Padmasana. Step 2, place the hands on the knees in Chin Mudra. Step 3, gently close your eyes and try to focus on the natural flow of your breath. Step 4, inhale and while exhaling, slowly and mindfully chant the sound Om. Feel the vibration in your body. Step 5, repeat this process for 5 rounds, maintaining a calm and steady rhythm. Step 6, after the chanting, sit quietly and observe the stillness and silence. Observe the breath. Step 7, try to remain in this silence for a few minutes. An image describing Om Dhyana is given on the top right of this page. Reflection. Were you able to feel any sensations or vibrations in your body while chanting Om? What was your state of mind after the chanting and during the silence? Did you experience a sense of peace or lightness in your body? Share your experiences with others in the class after the practice. Page number 177, Kriya Yoga. Note, Kriya Yoga is not traditionally a part of classical yogic practices. However, to encourage playfulness among children and to bring variety to the routine in the class, it has been included in the curriculum as a joyful and engaging activity in addition to other yogic activities. 1. Self-help. Swasahayata. Purpose. The following games help promote physical activity, attention and strategy. How to play? A. All participants must stand in a big circle facing inwards. B. One player is chosen as the chaser, X, and stands in the center of the circle. C. Another player is chosen as the runner. D. On a signal, the chaser, X, begins to chase the runner within the circle. E. The runner tries to avoid being caught by running in any direction within the circle. F. If the runner feels that they are about to be caught, they must quickly stop. Lift their right leg by bending it at the knee. Put their hand behind the bent knee and touch their nose with the same hand. Page number 178. On the top of this page, there is an image in which 8 students are standing on a grass field in which 7 students are runners and 1 student is a chaser who is standing in the center, and this student is trying to chase any of the runner. G. Once the runner assumes this position, they are temporarily safe. H. Once the runner releases the position, that is, stops touching their nose and lowers their leg, the chaser X can resume chasing. The runner tries to evade capture by running in any direction within the circle. I. If the chaser X touches the runner is considered out. Page number 179. J. The runner takes the place of chaser X and the game continues with a new runner. to Yama, Niyama, Asana. Purpose: to learn and remember the fundamental principles of yoga in a fun and interactive way. How to play? A. All players must stand or sit in a circle. B. One student is chosen as the leader for the round. The leader points to a student and gives a prompt related to either Yama, Niyama or Asana. For example, if the leader says Ahimsa, the student should respond as Yama. Or the leader says Standing Asana, the student should respond as Vrikshasana, etc. C. The students must respond quickly by calling out the name of a Yama, Niyama or Asana. D. If the answer is correct, the student continues to play. E. If the answer is incorrect or has been repeated from a previous round, the player is eliminated from the circle. F. The leader keeps moving around the circle, asking new questions until only one student remains, who will be the winner. Page number 180. 3. Akkad Bakkad Akkad Bakkad. Purpose: to enhance awareness, concentration and mental quickness through a structured verbal response using the words akkad, bakkad and akkad bakkad in place of specific numerals. How to play? A. The players must sit or stand in a circle. B. One player begins by saying one and the next player, moving clockwise, says two and so on. C. For multiples of three, say akkad instead of the number. Three means akkad, six means akkad, nine means akkad. D. For multiples of five, say bakkad instead of the number. 5 means bakkad, 10 means bakkad, 20 means bakkad. E. For numbers that are multiples of both 3 and 5, say akkad bakkad. 15 means akkad bakkad, 30 means akkad bakkad. F. If a player says the wrong word or says the number instead of the correct word, they are eliminated. G. Delayed responses are also not considered. Example of number calling sequence is as follows. 1, 2, akkad, 4, akkad, 7, 8, akkad, bakkad, 11, akkad, 13, 14, akkad bakkad, 16, 17, akkad, 19, bakkad, and so on. Page number 181. Guided self-assessment for students. The assessment can be done based on teacher's observation, parents' feedback, and also student self-reflection. Yoga for daily life. Four paths of yoga: Karma Yoga, selfless action, teacher's observation. There is a table. There are five different columns in which the heading of column 1 says observation, column 2 heading says always 4, column 3 heading says often 3, column 4 heading says sometimes 2, and column 5 heading says rarely 1. There are three different rows. On the starting of each row, different teachers' observation are written. First says helps others even without being asked. Second says takes responsibility for personal and group duties. And third row says, does acts of kindness like cleaning, helping, etc. Remaining table is left blank so that it can be filled up by the students. Self-observation. Read each statement carefully. Circle the number that best represents you. Again, there is a table in which there are 5 different columns. Column 1 heading says activities. Column 2 heading says always, 4. Column 3 heading says often, 3. Column 4 heading says sometimes, 2. And column 5 heading says rarely, 1. On this page, this table has 2 rows and the other rows are continued on the next page. First row says, 1. I help others even when they don't ask for it. And second row says, I take responsibilities for my personal duties like keeping my books, uniform clean, homework, etc. And the other part of the table is left blank so that it can be filled up by the students. Page number 182. The table continues. On this page, there are 5 different rows. The first row says, I enjoy volunteering in community services like cleaning the park, participating in planting. Second row says, I give away toys, books or clothes to children in need. Third row says, I show up some kindness actions like giving up my seat on a bus for an elderly person, helping a blind person on the road, sharing toys with friends, expressing gratitude for all those who help me. Row 4 says, I help with household chores without being asked. And row 5 says, I do my best in whatever I do, whether it is schoolwork, playing sports or helping at home. The other part of this table is left blank so that the students can fill it up. Jnan Yoga, the path of knowledge. Teacher's observation. There's a table given. This table again has 5 different columns. Column 1 heading says observation. Column 2 heading says always, 4. Column 3 heading says often, 3. Column 4 heading says sometimes, 2. And column 5 heading says rarely, 1. There are 3 different rows in this table, out of which 1 row is on this page and the remaining 2 rows are on the next page. The 1 row that is on this page, it says asks thoughtful questions in class. And the remaining part of this row is left blank to be filled up by the teachers. Page number 183. The same table continues. The second row of that table says, is curious to know more about self and the world. The third row says, applies lessons from stories to real life. And the other part of this table is left blank so that it can be filled up by the teachers. Self-observation. Read each statement carefully. Circle the number that best represents you. There is a table given in which there are 5 different columns. Column 1 heading says activities. Column 2 heading says always, 4. Column 3 heading says often, 3. Column 4 heading says sometimes, 2. And column 5 heading says rarely, 1. There are 5 different rows in this table. Row 1 says, I do not hesitate to ask questions with my teacher for better understanding. Row 2 says, I am curious to learn more about myself. Row 3 says, I enjoy exploring new things around me. Row 4 says, I follow good lessons I learn from stories. And row 5 says, I like to discuss values with my friends and family. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up by the students according to their self-observation. Bhakti Yoga, the path of devotion, teacher's observation. There is a table given in which again there are 5 different columns. First column says observation. Second column says always, 4. Third column says often, 3. Fourth column says sometimes, 2. And fifth column says rarely, 1. There are 2 different rows in this table. The first row says participates in prayer, bhajan or chanting. And the second row says expresses love and respect for teachers and parents. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up according to the teacher's observation. Page number 184, self-observation. Read each statement carefully. Circle the number that best represents you. There is a table given in which there are 5 different columns. First column says activities. Second column says always, 4. Third column says often, 3. Fourth column says sometimes, 2. And fifth column says rarely, 1. There are 5 different rows in this table. First row says, I take blessings from my parents, teachers, and elders every day. Second row says, I offer prayer when I wake up, before having meals, and before sleeping. Third row says, I enjoy listening to bhajans. Fourth row says, I like to sit quietly and observe my breath for at least 10 minutes in a day. And fifth row says, I trust my parents and God. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up by the students according to their self-observation. Yoga Sadhana, 1. Asana, Hast Uttanasana, Utkatasana, Virbhadrasana, Parvatasana, Janu Shirshasana, Gomukhasana, Simha Garjanasana, Trikonasana variation, Ardh Matsyendrasana, Matsyasana, Sarpasana, Tiryak Bhujangasana. There is a table given in which there are 4 different columns and 4 different rows, out of which one row is at this page and remaining 3 rows are on the next page. Column 1 heading says criteria. Column 2 says excellent and it has a very happy smiling face. Column 3 says good and it has a happy face. And column 4 says scope for improvement and it has a neutral face. Row 1 says demonstration of asanas. Demonstration of asanas is explained under various criteria further in different columns. Under excellent criteria, it says performs all asanas correctly. Under good criteria, it says performs all asanas correctly but needs minor corrections. Under scope for improvement criteria, it says requires repeated guidance. Page number 185. The remaining table follows here. In this table, row 2 says follow instruction. Under excellent criteria, it says very attentive. Under good criteria, it says attentive. Under scope for improvement criteria, it says requires repeated guidance. Row 3 says identification of asanas. Under excellent criteria, it says correctly identifies all asanas. Under good criteria, it says, identifies most asanas correctly. Under scope for improvement criteria, it says, requires repeated guidance. Row 4 says, effort and attitude. Under excellent criteria, it says, curious and focused. Under good criteria, it says, participates with interest. And under scope for improvement criteria, it says, easily distracted. 2. Mudra and Pranayama. There is a table given in which there are 4 different columns and 3 different rows. First column heading says criteria. Second column heading says excellent. Third column heading says good. And fourth column heading says scope for improvement. The first row says om chanting. And under excellent criteria, it says rhythmic. Under good criteria, it says requires minor corrections. Under scope for improvement, it says requires repeated guidance. Row 2 says identification and demonstration of mudras. Under excellent, it says identifies and performs. Under good, it says can identify but difficult to perform. Under scope for improvement, it says requires repeated guidance. Row 3 says identification and demonstration of different pranayama. Under excellent, it says identifies and performs. Under good, it says can identify but difficult to perform. Under scope for improvement, it says requires repeated guidance. This marks Chapter 7, Yoga Sadhana, the ending of Unit Number 3.
1: Khel Yog. You were just listening to this audiobook, textbook of physical education and well-being for Class 5. Narration, Meha Kheda. Sound recordist, Manju Kumari. Assistance in production, Jagbandhu Jana.
2: नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
9: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
11: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
9: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
12: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
9: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
13: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
9: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
14: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
15: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
14: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
16: हर घर सूर्य घर।
17: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
18: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
17: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
18: आपकी सेहत की बातें,
17: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
18: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
17: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
18: वो कहाँ पर?
17: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
18: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
17: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ के खास कार्यक्रम, जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की, और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें। जी हां, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएं। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।
19: धन्यवाद
17: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
19: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से, लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे। जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फाल्स मट की जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पर भूरा धब्बा आ जाता है, साथ ही साथ जो है इसमें सीथ ब्लाइट होता है
17: जी।
19: सीथ ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है।
17: अच्छा।
19: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं। किसान भाई जानते होंगे कि जिंक के कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जिंक की कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में आज के स्थिति में आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फॉल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पे वो चीज़ लग जाता है। अच्छा। और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है। तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते
20: जी।
19: इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फॉल्स मट या कलिया बीमारी पे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है। इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें। अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो, क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं
20: जी। डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग, और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
19: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूँ तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा, और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं, तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं तो उस कारक को आपको मारना होगा। अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
20: वो खुद ब खुद मर जाएगा
19: जी। अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है,
20: बिल्कुल,
19: तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है, क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त, क्योंकि खेत आपका खाली होगा तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
20: अच्छा।
19: और धूप लगने के कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं
20: गहरी जुताई से।
19: जी
20: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
19: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
20: अच्छा।
19: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टेमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं, तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा, जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, पिछड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है। और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है, जो सुगंधित धान है, उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो दो फफूंद नाशक है उसमें एक फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा, और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजी

0: इंडिया में जो है ऊपरी सतह होता है जिसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं, और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता
1: अधिक
0: है,
1: जमा हो जाता जी।
0: तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है, और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से दो बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्रायः बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती की, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है, जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप, उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए, तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड, मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमा, जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में, निचली सतह में दो बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है, जिसको कि पर्णअंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आप, आपके लिए जो है बैक्टीरिसाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरिसाइड के साथ एक फफूंद नाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया शीत ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था शीत ब्लाइट के बारे में
1: जी।
0: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो शीत रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पर ये सांप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी, एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए, शीत ब्लाइट के बचाव करने के लिए, आप वेलिडामाइसिन का आप जो है, अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।

0: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
0: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, और साथ ही स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अंग उमंग में। जी हां, हम किसानों के लिए बहुत सारे चर्चाएं लेकर आते हैं, लेकिन जब हमारे किसान बंधु हैं, हमारे किसान भाई बहने हैं, और उनके लिए साथ ही कृषि में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उनसे जुड़ी लोकगीत ना हो तो ये थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा। हमारे स्थानीय कलाकार साथ ही यहाँ पर मुख्य गायक हैं रविंद्र रामपुरी जी, और इनका साथ देने के लिए हैं ताराकांत ठाकुर जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, साथ ही पंडित रघुनंदन जी। आइए सुनते हैं।

0: अभी आपने एक बहुत ही मधुर कृषि गीत सुना और इसके बाद एक और खास कृषि गीत, और इसमें आप सुनेंगे कि क्या दिनचर्या होती है किसानों की। इस लोकगीत के द्वारा हम पेश करते हैं हमारे किसान बंधुओं की दिनचर्या। आइए सुनते हैं हमारे मुख्य गायक ताराकांत ठाकुर जी, इनके साथ हैं बम बम जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, पंडित रघुनंदन जी और रविंद्र रामपुरी जी।
1: सुबह उठते ही किसान कैसे खुश हो जाता है, कैसे अपने हल बैलों को खिला पिला के तैयार कर लेता है, कैसे अपने घर वाली को, घर के बाल बच्चे को खेत पे आने के लिए कहते हैं, और वो किस तरह से परेशान रहते हैं और उस परेशानी में क्या खुशी मनाते हैं। आइए हम इस लोकगीत के माध्यम से आपको सुनाते हैं।

0: इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर ग्रामीण जीवन का एक दृश्य है वो ज़रूर आया होगा। लोकगीत की एक यही विशेषता होती है कि ये अपने आप में सारे विश्व को, चाहे वो गांव से लेकर शहर हो, हर संस्कृति को समाये रखता है। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए अंग उमंग कार्यक्रम। नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन के बारे में। सघन बागवानी क्या होती है और अगर सघन बागवानी करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही छत्रक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे आम के पौधों के लिए, पेड़ के लिए फायदेमंद होता है, इस बारे में आज विस्तार से जानेंगे डॉक्टर कुमारी करुणा से। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सघन बागवानी क्या है।
1: हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सघन बागवानी जो है एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम दूरी पर और कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित जमीन और कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले फलों या सब्जियों का उत्पादन प्राप्त करना है।
0: जी मैम, तो मैम अगर हम सघन बागवानी की बात करते हैं तो क्या सघन बागवानी करने से कुछ फायदे होते हैं?
1: हाँ, कम जमीन में कई गुना अधिक पैदावार मिलती है इसको सघन बागवानी करने से, और फलों का आकार एवं गुणवत्ता भी अच्छा हो जाता है। तुराई हो, सिंचाई हो एवं देखरेख करना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पौधे के साइज को मेंटेन किया जाता है, छोटा रखा जाता है, तो जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। साथ ही साथ किसानों की आय पारंपरिक खेती की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है।
0: जी मैम। मैम अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सघन बागवानी की विशेषताएं क्या हैं और इसे क्यों करना चाहिए?
1: सघन बागवानी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो इस पद्धति में मजदूर भी कम लगता है क्योंकि पौधा को छोटा रखा जाता है जिससे पौधे पर किया जाने वाला कार्य आसानी से हो जाता है। इस पद्धति में पूरे जमीन का सही सही उपयोग हो जाता है। सघन बागवानी में जैसे खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, फफूंदनाशी, कीटनाशी इत्यादि का लगभग पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है, जिससे कि परंपरागत बागवानी की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस बागवानी को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक होती है और हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक फलों की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ खेती एवं बाग लगाने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके चलते कि जमीन थोड़ा सा कम होते जा रहा है। अगर हम इस पद्धति से बागवानी करेंगे तो जो मेरी बढ़ती जनसंख्या का डिमांड है फल और सब्जी का वो मिल पाएगा।
0: जी मैम। मैम अगर हम सघन बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई बहन तो क्या उसमें कुछ विशेष किस्म होते हैं जिनका चयन करना चाहिए?
1: हाँ, सघन बागवानी के लिए ये होता है कि सभी का स्ट्रक्चर, पौधा हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, थोड़ा अलग अलग होता है। कोई अधिक ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है, तो इसमें भी पौधा में भी आम में भी कुछ बौना किस्म होते हैं तो उसको प्रीफर करते हैं सघन बागवानी के लिए। इसमें वैरायटी की बात करें तो है आम्रपाली, जैसे इसको किचन गार्डन के लिए भी सूटेबल माना गया है क्योंकि इसमें ग्रोथ कम होता है, कम स्पेस लेता है, तो आम्रपाली लगा सकते हैं सघन बागवानी में। मल्लिका का भी थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा ही है। पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिका है, पूसा श्रेष्ठ है, ये सब का जो ढांचा होता है पौधा का वो थोड़ा छोटा होता है, इसको प्रीफर कर सकते हैं सघन बागवानी के लिए।
0: जी मैम। मैम क्या सघन बागवानी करने के लिए भूमि की कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है और पौधरोपण कैसे करते हैं?
1: भूमि की तैयारी के लिए कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो परंपरागत बागवानी के लिए जो तैयारी होती है पौधा लगाने का, वही तैयारी इसमें भी की जाती है। सिर्फ पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी जब हम रेखांकन करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितना रखें।
0: जी।
1: तो एक आम के लिए अगर सघन बागवानी करनी है तो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 5 मीटर बाय 5 मीटर है। और पौधा लगाने के लिए जो गड्ढा बनाएंगे तो उसमें 60 घन सेंटीमीटर का गड्ढा मई के महीने में खोदकर उसको फिर मानसून आने से पहले 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर भर देना चाहिए। पौधरोपण के लिए आम के लिए पौधा से पौधा की दूरी, और ये जो उच्च गुणवत्ता वाला पौधा जो होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसे किसी विश्वसनीय पौधशाला या शोध संस्थान से ही लेना चाहिए। फिर उन्हें जुलाई के मध्य तक सावधानीपूर्वक तैयार गड्ढों में विधिवत रोप देते हैं और रोपने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं।
0: जी मैम, अब आप हमें सिंचाई के बारे में विस्तार से बताइए कि सिंचाई कैसे करनी चाहिए।
1: हाँ, अगर हम सिंचाई प्रथम 2 वर्षों तक आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, जब लगे कि हाँ पौधे को अब जरूरत है पानी का, तो उसको 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि 2 साल के पौधे बहुत छोटे होते हैं 2 साल तक, तो उसका बहुत प्रॉपर केयर करना पड़ता है, कब उसे पानी की आवश्यकता है किसान भाई को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद जब बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसको परंपरागत तरीके से अगर हम सिंचाई करें तो ठंडा में यानी जाड़े में 15 दिन के अंतराल पर और गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। और अगर सूक्ष्म सिंचाई द्वारा हम पानी अगर देते हैं तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी पौधा को देना चाहिए, उससे पानी का बचत भी होता है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: जी मैम, मैम अब हम छत्रक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: सघन बागवानी में प्रारंभिक कटाई छटाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। पौधरोपण के 1 वर्ष बाद मुख्य तने को भूमि के सतह से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर से दिसंबर जनवरी में काटते हैं। तनों की कटी सतह पर फफूंदनाशक दवा का पानी में या अंडी के तेल में घोल बनाकर अच्छी तरह लगाना चाहिए। कटाई के बाद तनों पर अप्रैल से बहुतायत में कल्ले निकलते हैं, जिनमें से केवल 4 कल्लों को चारों दिशाओं में बढ़ने देते हैं। शेष कल्लों को यथाशीघ्र काट देना चाहिए। फिर इन्हीं कल्लों को पुनः 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काटते हैं। इन 4 कल्लों को चारों कल्लों से पुनः 2 से 3 कल्लों का सृजन होने देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 वर्ष में पौधे का वांछित छतरीनुमा आकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पेड़ में जुलाई में निकले लगभग 80% शाखाओं में मंजर आ जाता है, फलस्वरूप अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। 10 वर्ष बाद पौधे से लगभग 10 से 12% टहनियाँ, जैसे सूखी टहनियाँ हो या रोगग्रस्त टहनियाँ हो, तो प्रतिवर्ष निकालते रहना चाहिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिले और स्वस्थ कल्लों का सृजन हो सके। इस प्रकार पौधों का सामयिक प्रबंधन करके 20 से 25 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण भरपूर फलन ली जा सकती है।
0: जी मैम, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो 20 से 25 वर्ष तक अच्छे फल मिल सकते हैं हमें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से आम की सघन बागवानी करें और सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो हमारे किसान भाई बहन जो बागवानी करते हैं, आप मैम की बातें जो मैम ने बताई है उन बातों का ध्यान रखिए, और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे फल आएंगे, गुणवत्ता युक्त फल आएंगे और अधिक फल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फॉस्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि फॉस्फोरस कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से सस्य फसलों के लिए और बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
2: उमा अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान गेहूं मक्का जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है और हमारी जो बिहार की किसान हैं उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें और सस्य फसल जैसे धान गेहूं मक्का जौ इत्यादि।
0: तो मैम फास्फोरस क्या है अब ये बताइए।
2: जी फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है अगर आप सुने होंगे एटीपी एडीपी न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स। तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं पौधा है आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी कोशिकाओं के लिए फॉस्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। तो फॉस्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फॉस्फोरस जरूरी होती है जैसे कि कोशिका विभाजन प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ऊर्जा संचरण जड़ विकास आपकी फ्लावरिंग पुष्पन और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम सस्य फसलों में अगर हम फॉस्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है।
2: जी हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फॉस्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फॉस्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में उसमें भी आपको फॉस्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थितियां परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फास्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फास्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फास्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
2: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा की, गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग, हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फास्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 टू 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30 प्रतिशत तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल, अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
2: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फास्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उसके आधार पर हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉयल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर हैं जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फास्फोरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फास्फोरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फास्फोरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्सॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूअर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूअर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होके जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस की वो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है। तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक फिर क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फॉस्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो। तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
2: जी जरूर। फॉस्फोरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
2: थैंक यू वेरी मच उमा।
0: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, कई बार किसान भाई बहनों को मौसम की वजह से या कोई अनेक वजहों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनके पास लागत की भी कमी होती है। और हमारे ऐसे कई सारे किसान भाई बहन हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते। हमारी आज की चर्चा का विषय यही है, कृषि विकास के लिए सरकारी योजनाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसे मैम ने कहा, कृषि में जो सबसे आजकल हमारा फसल, जब फसल बहुत ख़राब हो रहा है बाढ़ के कारण से, सूखा के कारण से, और भी बहुत सारे इस तरह के सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए बहुत सरकारी योजनाएं हैं जिससे भाई किसान भाई बंधु लाभ उठा सकते हैं। और इसकी जानकारी थोड़ा बहुत तो है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से बहुत सारे किसान भाई बंधु उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनको कहां से वित्तीय सहायता मिलेगा? बहुत सारे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, तो जानकारी के अभाव में वो लोन नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे स्कीम के बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती, तो आज उसी पे थोड़ा बात करेंगे।
0: सर, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जिनका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठा सकते हैं।
1: देखिए, बहुत तरह के हैं, जिसमें पहला जो है आय एवं ऋण सहायता। जो कोई भी आप छोटे और जो छोटे सीमांत किसान है उनको आय बढ़ाने के लिए, उनको लोन देने के लिए बहुत सारे स्कीम है। दूसरा जो सबसे मेन है, जो जैसे आजकल बहुत रिस्क है, फसल तैयार है, देखिए इसी बार आम लीची के फसल बहुत खराब हुआ, गेहूं का फसल बहुत खराब हो गया, ऐसे मतलब बेमौसमी जो बरसातें हुई, फिर कभी सूखा पड़ जाने के कारण से, कभी बाढ़ पर, तो उसके लिए जो है जोखिम सुरक्षा योजना, जिसको आप लोग जानते होंगे, फसल बीमा योजना है। फिर उसके बाद सिंचाई के लिए है, फिर और भी बहुत सारा आप में उसमें जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पॉली हाउस बनाना है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इस सब के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे योजनाएं हैं।
0: यस सर, तो सर हम शुरुआत करते हैं लोन के लिए कौन कौन से योजनाएं हैं इसके साथ। तो लोन के लिए कौन कौन सी,
1: देखिए सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री किसान योजना, उसमें जो है छोटे और सीमांत किसानों को सब आजकल सभी भाई बंधु इससे पूर्ण रूप से मतलब इसका जानकारी होगा उनको। आजकल सरकार जो है 6,000 रुपये सालाना उनको 3 किस्तों में 2,000 रुपया उनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे अहम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। आप लोग अपने अपने नज़दीकी बैंक में जाके, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ जाके, नहीं तो हमारे अपने कृषि विश्वविद्यालय आके जानकारी इसका प्रदान मतलब ले सकते हैं, कहाँ से ऐसे इसको, कहाँ किन से मिलेंगे, कैसे इसका हम कहाँ अप्लाई करेंगे जिससे हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिल पाए। किसान क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी क्या है, जैसे आपको तुरंत यूज है, तुरंत आपको नीड है, आपकी आवश्यकता पड़ गई, जो कल ही 5,000 रुपया निकालना है, तो आप बैंक तो 5,000 तुरंत आपको लोन देगी नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं जैसे दूसरे कार्ड से निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है जिसमें जो ऋण दर बहुत कम है, अगर आप समय से चुकाते हैं तो 4% ही देना पड़ता है, तो एक तो वो है। दूसरा जो है AIF बोलते हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी जो भंडारण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, लगभग उसमें मतलब आप करोड़ों रुपये तक का उसमें फंड ले सकते हैं।
0: यस सर, तो अभी हमने लोन के बारे में बात की और अभी आपने बताया कि फसल बीमा योजना भी है
1: जी।
0: किसानों को मौसम की वजह से नुकसान।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो कौन कौन से
1: उसमें जो है सबसे प्रमुख, तो प्रधानमंत्री

0: सारा आपका फसल सुरक्षित हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक विपदा के कारण से बाढ़ सूखा किसी भी कारण से फसल खराब होता है तो उसमें पूरी आपके आपको पूरा उसका जो है मूल्य आपको मिल जाएगा। तो दूसरा है पीएम किसान मानधन योजना, जनधन योजना, और उसमें किसानों के लिए पेंशन दिया जाता है, एक तो ये है। फिर जैसे मैंने बोला सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसका एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया, प्रति ड्रॉप अधिक उपज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब आप कैसे पानी को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें जिससे आपका पानी की बर्बादी भी कम हो और आपकी उपज भी बढ़े। जी
1: तो सर, आजकल हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें, और ये अच्छी बात भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे में बहुत सी लागत की परेशानी आती है, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी कोई खास स्कीम है जिसका फायदा किसान भाई बहनों को मिल सकता है?
0: जी मैम, उसमें जैसे है परंपरागत कृषि विकास योजना, आप भाई बंधु आप लोग अगर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो इसके बारे में जानकारी आप उपलब्ध कीजिए, और आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या बैंक में भी आप जाके पता कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करना चाहते हैं उनको कम मतलब सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी मिलता है और उस पे उनको लोन मिलता है जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सभी भाई बंधु इसमें जागरूक मतलब इसके बारे में उनको जानकारी होगी, जो भी आप फसल लगाते हैं उससे पहले आपको अपनी मिट्टी में कौन कौन उर्वरक उसमें उपलब्ध है, कमी है ज्यादा है, उसकी पहले जानकारी हो जानी। तो ऐसा होता है कभी कभी देखा गया है जो कुछ उर्वरक तत्व पहले से मौजूद है फिर भी ऊपर से लोग डाले जा रहे हैं तो उल्टा वो लाभ की जगह पर हानि पहुंचाता। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का आप लाभ उठाइए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके तहत जो है लगभग सरकार ने 2,817 करोड़ का बजट इस बार पास किया है। उसके अंतर्गत कोई किसान अगर इसमें डिजिटलाइजेशन ऐप बनाना चाहते, सामान बेचने के लिए जानकारी लेना चाहते तो उसके लिए ये स्कीम है।
1: जी तो ये कुछ स्कीम्स हैं, अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं जिनका हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं। सर, अगर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहे तो क्या कहेंगे आप?
0: देखिए मेरा आप सभी भाई बहनों से एक निवेदन है, जो इसके बारे में जानकारी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण से, सही जानकारी नहीं होने के कारण से आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो भी ठीक आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है आप या तो कृषि विश्वविद्यालय आइए, आप जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ उस पर आप कॉन्टेक्ट करिए हमें, और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके ग्रामीण विकास बैंक है, बैंक जाइए वहां से जानकारी उपलब्ध कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाया है, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जिन भी स्कीम्स के बारे में बताया, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन उन स्कीम्स का सुविधा अनुसार लाभ जरूर लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: किसान भाई बहनों, आज की चर्चा से उम्मीद है कि आपको काफी लाभ होगा और आपको काफी कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिला होगा सरकारी योजनाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने

0: मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन, और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर,
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR-FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशु पालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहां पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप वहां पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत जरूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहां पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उससे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती हैं और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
0: नमस्कार, मैं RJ अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 FM ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
12: जी धन्यवाद।
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
12: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। खास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूलगोभी में ज़्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
12: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: जी जी।
12: वो चाहे कोई भी फसल हो, तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है और पछेती फूलगोभी भी आती है। तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम।
0: अच्छा,
12: तो इसी के इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी 2 है, पंत गोभी 3 है। तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड 2 है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी मागी आती है, जायंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज हैं जो हम पछेती मौसम में लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
12: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
0: अच्छा।
12: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं, और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं, और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपके खेत के हिसाब से कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
0: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
12: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूल गोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
0: अच्छा।
12: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लिए लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
0: अच्छा।
12: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
0: अवशेष,
12: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
0: जी।
12: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं। उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए। और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है, वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं। अच्छा। सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए। और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए। और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है। अच्छा। पौध रोपाई के लिए तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
0: अच्छा।
12: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
0: मतलब
12: तैयार होती है,
0: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
12: जी। अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
0: होती है,
12: बढ़ जाती है। तो इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए, डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए।
12: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती। तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज्यादा होती है।
0: अच्छा।
12: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में मुख्य खेत में डालना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
12: और इसके अलावा जो एक खरपतवार जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए, और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में। और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद आपने जब रोपाई कर दिया, रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
0: अच्छा
12: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फॉस्फोरस के लिए, जो हम फॉस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फास्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
0: तो इसके बारे में जानेंगे, विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना चाहेंगे हम।
12: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं।
0: अच्छा।
12: और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
0: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
12: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
0: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
12: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
0: बैलेंस बना रहता है,
12: वो फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है। उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
0: जी,
12: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा। अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
0: मतलब
12: तो उसका रंग
0: ताजा
12: तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
0: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
12: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
0: अच्छा,
12: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में 2-3 तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
0: अच्छा,
12: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
0: जी।
12: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किसमें उगाए, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विप टेल।
0: अच्छा,
12: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विप टेल होता है एक मॉलिबिडनम की कमी से।
0: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विप टेल?
12: हाँ, विप टेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता।
0: अच्छा,
12: है तो उसको विप टेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहां पे ज्यादा बारिश होती है, वहां की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
0: अच्छा,
12: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
0: अच्छा,
12: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है जो ग्रोइंग पोर्शन होता है उसको ना खाए और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसिनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूल गोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
0: नुकसान पहुंचा,
12: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो अच्छा। इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है, इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, या तो फॉर्मेल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उससे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेवेस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आई इसमें जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त

0: अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य

स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
3: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
3: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
3: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
3: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
3: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
3: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
3: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
2: अच्छा, तो ये बात है?
3: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
2: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
3: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
2: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
3: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
2: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
3: और फिर ट्रेन आती है।
2: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
3: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
2: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
3: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
2: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
3: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
2: जी,
3: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओं, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
2: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
3: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
2: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
3: जी हाँ मित्रों, ना जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
2: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
3: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
2: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
3: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
2: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
3: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
3: माला की चांदी की पायल।
4: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
5: अरे माला तू।
4: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
6: बहन जी, डाकिया।
4: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
7: माला, यह तुम्हारे लिए है।
4: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
8: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: 2 मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे कैसे?
8: अरे जोर से मारना।
7: सैम, है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम, है ना? क्या तुम लोग तैयार हो?
8: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
7: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
6: कैसा प्रयोग?
7: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
6: बिना
8: तार के? भला ये कैसे संभव है?
7: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
8: अच्छा
7: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
6: अच्छा।
7: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
8: हाँ, ठीक है।
7: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
6: घंटी भी?
7: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
9: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
7: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
9: हाँ हाँ,
7: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
9: हाँ हाँ, भेजो जल्दी भेजो।
8: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है!
9: अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
8: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है! अरे वाह,
7: सिग्नल मिला?
8: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
3: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार, यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
4: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है।

0: रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है!
0: वाह, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकरा कर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो, डेक की ओर भागो।
6: क्या हो गया?
5: ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो
7: जाइए। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
5: हेडपोर्ट कितनी बड़ी खराब पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर गया।
0: जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेरल्ड।
7: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, निकलो, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, और हेल्ड लाइट सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
7: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नाव के नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास
3: नहीं होता। Mr. Marconi.
6: जी।
3: अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
6: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा
3: हूँ। गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: बिल्कुल।

20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।

0: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
7: कौन सी कहानी टीकी?
6: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
6: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
7: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
6: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
11: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
10: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
12: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
10: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
13: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
10: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
14: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
10: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
15: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
16: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
15: और लाइट बिल के
16: अब 0 रुपए कैसे दूं?
15: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
17: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
18: हर घर सूर्य घर।
19: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
15: उन्नत कृषि।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन।
20: दोस्तों स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावना है, क्या चुनौतियां आती है, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
21: नमस्कार।
20: आप है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
21: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पर काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं। बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं। और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
20: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
21: जी जी जी।
20: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है।
21: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
20: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो।
21: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कढ़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और ये जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है। इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
21: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तोड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
0: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
21: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा, एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजीम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके, एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, और मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में NPK का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से NPK की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
20: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
21: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
20: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
21: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
20: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
21: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं।

0: के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहां मक्के की कीमत 20 रुपए प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपए प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयू सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए, और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी

0: नहीं मिल रही।
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर।
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G/7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?
1: जी ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने मैम कि प्राकृतिक खेती क्यों आन पड़ी है, क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि आज हम जितना चीज़ हम खा रहे हैं वो एक तरह से रसायन से उत्पाद किया हुआ है और वो कहा जाए तो एक जहर है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जहर है। और जहर ये आया कहाँ से? तो जहर आने का मतलब कई कारण है। पहला कारण है कि हम रसायन जो डाल रहे हैं वो मिट्टी में डाल रहे हैं और मिट्टी में हमारा जितना फसल है वो मिट्टी से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि आज चाहे वो गरीब तबके के हो या बहुत बड़े घराने से हो, वो बीमारी को बेच नहीं सकता और अपने स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम। तो प्राकृतिक खेती है अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, खुद आने वाले जो पीढ़ी है उनको बचाने के लिए इसलिए जरूरत है।
0: तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की जरूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
1: देखिये रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते, अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। अगर बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लीजिए वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज़्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज़्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज़्यादा वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज़्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है। और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है जो कि हम खाते हैं, तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए जरूरत है।
0: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं।
1: जी,
0: तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
1: देखिए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है, ये हमारे पुराने पद्धति है जो की हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो की गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे चीज़ को जो है ये जब से ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा बड़ा संसाधन होता था उनमें वो व्यवस्थित करके रखते थे, जो कि अपना ही बीज से वो उत्पाद लेते थे और शुद्ध लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज डंकल प्रस्ताव जब से आया अपने देश में, उनके बाद हमारे देश की कृषि में तो बहुत ज़्यादा मतलब उपज आया, इतना आया कि हम विदेशों को भी दे रहे हैं। लेकिन परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो तो देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं तो घी ये दही भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को जब हम अपने खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होते हैं, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा। मैम
0: बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो सर इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पर पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
1: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो हमारा सारा चीज स्वस्थ हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर हम रसायन डाल दिए वहाँ के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा, यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे, इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा। मैम तो वो बढ़ेगा कैसे? तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ठीक है, तो जीवामृत कहाँ से आएगा, तो जीवामृत का घर कहाँ है? तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में। और वो मिट्टी कहाँ है? जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। हम रसायन कहाँ नहीं डाले हैं? तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं। और वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का सॉइल जीवित है, उसमें अभी भी जीवाणु करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद है। वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले और गाय का मूत्र और बेसन गुड़, ये छोटा छोटा सामग्री है जो कि हम जीवामृत के रूप में बना के मिट्टी में डालते हैं तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
0: तो सर आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा, तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन पर टिके हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो एकाएक आप रसायन को अगर हटा के प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाते हैं तो पहला ईयर में आपका कुछ उत्पाद घटेगा, इसलिए कि उस मिट्टी को रसायन की आदत पड़ गई है। एकाएक अगर हम रसायन को हटाते हैं तो हमारा उत्पाद कुछ घटता है, लेकिन अगर हम लगातार इस पर 3 साल काम करेंगे तो दूसरा ईयर क्या होगा कि हमारा उत्पाद लेवल में आएगा, तीसरा ईयर मेरा वो उत्पाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आप उस इनपुट को जो आप प्राकृतिक खेती के तहत बनाते हैं उनको डालते जाएंगे और फसल चक्र को अपनाएंगे तो आपका उत्पाद घटेगा नहीं और बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैम ये है कि आपके फसल में लगने वाले लागत बहुत कम आएगा, क्योंकि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका डीएपी के रूप में घन जीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पर्सन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
0: ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जिन मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा लेकिन बाद में वो चीजें हो जाती है मैनेज, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए।
1: थैंक यू मैम।
0: दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
10: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
13: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
13: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
13: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
14: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
13: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटाश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
14: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
13: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 2 बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से 1 बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
14: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
13: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तरबतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
14: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
13: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व

0: तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के एक हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में एक हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: FM Green हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी हैं। जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं मैम KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है।
10: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है। गेंदा का महत्व बहुत ज्यादा है आज के डेट में। हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफी उपलब्ध है इसके लिए।
9: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
10: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों के गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार के डिमांड पे, मांग पर, इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
9: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
10: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धित प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पूसा अर्पिता है, पूसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बैंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं, और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं, तो उनके पास अपना पौधा रहेगा और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए, बालू की मात्रा रहनी चाहिए, क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है, अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे, और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे। और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं, एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
9: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
10: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6-7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है, और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उनसे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करे, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है। 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं, तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4 × 4 = 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है, और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करें। नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें
11: जी ना।
10: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है। लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं। और सबसे बड़ा कमजोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में कि यहाँ का जो बाजार है, भागलपुर का जो बाजार है फूलों का बाजार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाजार पर कलकत्ता के ही बाजार का कब्जा था और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है। लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है
11: जी। मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
10: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें। क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है। और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसके लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है और वो अरका भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं, IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र। और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
11: जी मैम,
10: और वो उसको करना प्रारंभ करने, और पैसे की कमी नहीं है इसमें
11: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाजार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए। और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: थैंक यू उमा।
11: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
12: उन्नत कृषि,
13: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
13: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
16: कौन सी कहानी टीकी?
15: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
17: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
15: शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
12: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
15: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
12: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
17: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
18: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
19: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
18: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू 8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली

0: अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशु पालकों के लिए सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक, उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: the student should respond as Yama. Or the leader says standing asana, the student should respond as Vrikshasana, etc. C. The students must respond quickly by calling out the name of a Yama, Niyama or Asana. D. If the answer is correct, the student continues to play. E. If the answer is incorrect or has been repeated from a previous round, the player is eliminated from the circle. F. The leader keeps moving around the circle, asking new questions until only one student remains, who will be the winner. Page number 180. 3. Akkad Bakkad Akkad Bakkad. Purpose: to enhance awareness, concentration and mental quickness through a structured verbal response using the words akkad, bakkad and akkad bakkad in place of specific numerals. How to play? A. The players must sit or stand in a circle. B. One player begins by saying one and the next player, moving clockwise, says two and so on. C. For multiples of three, say akkad instead of the number. Three means akkad, six means akkad, nine means akkad. D. For multiples of five, say bakkad instead of the number. Five means bakkad, 10 means bakkad, 20 means bakkad. E. For numbers that are multiples of both 3 and 5, say akkad bakkad. 15 means akkad bakkad, 30 means akkad bakkad. F. If a player says the wrong word or says the number instead of the correct word, they are eliminated. G. Delayed responses are also not considered. Example of number calling sequence is as follows. 1, 2, akkad, 4, akkad, 7, 8, akkad, bakkad, 11, akkad, 13, 14, akkad bakkad, 16, 17, akkad, 19, bakkad, and so on. Page number 181. Guided self-assessment for students. The assessment can be done based on teacher's observation, parents' feedback, and also student self-reflection. Yoga for daily life. Four parts of yoga. Karma yoga, selfless action, teacher's observation. There is a table. There are five different columns in which the heading of column 1 says observation. Column 2 heading says always, 4. Column 3 heading says often, 3. Column 4 heading says sometimes, 2. And column 5 heading says rarely, 1. There are three different rows. On the starting of each row, different teachers' observation are written. First says, helps others even without being asked. Second says, takes responsibility for personal and group duties. And third row says, does acts of kindness like cleaning, helping, etc. Remaining table is left blank so that it can be filled up by the students. Self-observation. Read each statement carefully. Circle the number that best represents you. Again, there is a table in which there are five different columns. Column 1 heading says activities. Column 2 heading says always, 4. Column 3 heading says often, 3. Column 4 heading says sometimes, 2. And column 5 heading says rarely, 1. On this page, this table has 2 rows and the other rows are continued on the next page. First row says 1. I help others even when they don't ask for it. And second row says, I take responsibilities for my personal duties like keeping my books, uniform clean, homework, etc. And the other part of the table is left blank so that it can be filled up by the students. Page number 182. The table continues. On this page, there are 5 different rows. The first row says, I enjoy volunteering in community services like cleaning the park, participating in planting. Second row says, I give away toys, books or clothes to children in need. Third row says, I show up some kindness actions like giving up my seat on a bus for an elderly person, helping a blind person on the road, sharing toys with friends, expressing gratitude for all those who help me. Row 4 says, I help with household chores without being asked. And row 5 says, I do my best in whatever I do, whether it is schoolwork, playing sports, or helping at home. The other part of this table is left blank so that the students can fill it up. Jnana Yoga, the path of knowledge. Teacher's observation. There is a table given. This table again has 5 different columns. Column 1 heading says observation. Column 2 heading says always 4. Column 3 heading says often 3. Column 4 heading says sometimes 2. And column 5 heading says rarely 1. There are 3 different rows in this table, out of which 1 row is on this page and the remaining 2 rows are on the next page. The 1 row that is on this page, it says asks thoughtful questions in class. And the remaining part of this row is left blank to be filled up by the teachers. Page number 183. The same table continues. The second row of that table says, is curious to know more about self and the world. The third row says, applies lessons from stories to real life. And the other part of this table is left blank so that it can be filled up by the teachers. Self-observation. Read each statement carefully. Circle the number that best represents you. There is a table given in which there are 5 different columns. Column 1 heading says activities. Column 2 heading says always 4. Column 3 heading says often 3. Column 4 heading says sometimes 2. And column 5 heading says rarely 1. There are 5 different rows in this table. Row 1 says, I do not hesitate to ask questions with my teacher for better understanding. Row 2 says, I am curious to learn more about myself. Row 3 says, I enjoy exploring new things around me. Row 4 says, I follow good lessons I learn from stories. And row 5 says, I like to discuss values with my friends and family. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up by the students according to their self-observation. Bhakti Yoga, the path of devotion, teacher's observation. There is a table given in which again there are 5 different columns. First column says observation. Second column says always 4. Third column says often, 3. Fourth column says sometimes, 2. And fifth column says rarely, 1. There are two different rows in this table. The first row says participates in prayer, bhajan or chanting. And the second row says expresses love and respect for teachers and parents. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up according to the teacher's observation. Page number 184. Self-observation. Read each statement carefully. Circle the number that best represents you. There is a table given in which there are 5 different columns. First column says activities. Second column says always 4. Third column says often 3. Fourth column says sometimes 2. And fifth column says rarely 1. There are 5 different rows in this table. First row says I take blessings from my parents, teachers and elders every day. Second row says I offer prayer when I wake up, before having meals and before sleeping. Third row says I enjoy listening to bhajans. Fourth row says I like to sit quietly and observe my breath for at least 10 minutes in a day. And fifth row says I trust my parents and God. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up by the students according to their self-observation. Yoga sadhana, 1. Asana, Hast Uttanasana, Utkatasana, Virbhadrasana, Parvatasana, Janu Shirshasana, Gomukhasana, Simh Garjanasana, Trikonasana variation, Ardh Matsyendrasana, Matsyasana, Sarpasana, Tiryak Bhujangasana. There is a table given in which there are 4 different columns and 4 different rows, out of which 1 row is at this page and remaining 3 rows are on the next page. Column 1 heading says criteria. Column 2 says excellent and it has a very happy smiling face. Column 3 says good and it has a happy face. And column 4 says scope for improvement and it has a neutral face. Row 1 says demonstration of asanas. Demonstration of asanas is explained under various criteria further in different columns. Under excellent criteria, it says performs all asanas correctly. Under good criteria, it says performs all asanas correctly but needs minor corrections. Under scope for improvement criteria, it says requires repeated guidance. Page number 185. The remaining table follows here. In this table, row 2 says follow instruction. Under excellent criteria, it says very attentive. Under good criteria, it says attentive. Under scope for improvement criteria, it says requires repeated guidance. Row 3 says identification of asanas. Under excellent criteria, it says correctly identifies all asanas. Under good criteria, it says identifies most asanas correctly. Under scope for improvement criteria, it says requires repeated guidance. Row 4 says effort and attitude. Under excellent criteria, it says curious and focused. Under good criteria, it says participates with interest. And under scope for improvement criteria, it says easily distracted. 2. Mudra and pranayama. There is a table given in which there are four different columns and three different rows. First column heading says criteria. Second column heading says excellent. Third column heading says good. And fourth column heading says scope for improvement. The first row says om chanting, and under excellent criteria it says rhythmic. Under good criteria it says requires minor corrections. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. Row 2 says identification and demonstration of mudras. Under excellent it says identifies and performs. Under good it says can identify but difficult to perform. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. Row 3 says identification and demonstration of different pranayama. Under excellent it says identifies and performs. Under good it says can identify but difficult to perform. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. This marks chapter 7 yoga sadhana, the ending of unit number 3.
1: Khel yoga. You were just listening to this audiobook, textbook of physical education and well-being for class 5. Narration, Meha Kheda. Sound recordist, Manju Kumari. Assistance in production, Jagbandhu Jana.
2: Natak dekho, natak dekho, aao saare natak dekho. Khasra aur rubela ki kuch zaroori baatein sun lo. Natak dekho, natak dekho.
3: Kya aap sab khasre ke baare mein jante hain? Haan ya na?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
9: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
11: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैविक उर्वरक।
12: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
13: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
12: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
14: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
12: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
15: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
16: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
15: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
17: हर घर सूर्य घर,
18: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
19: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
18: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
19: आपकी सेहत की बातें,
18: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
19: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
18: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
19: वो कहाँ पर?
18: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
19: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
18: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज के खास कार्यक्रम, जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की, और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें। जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएं। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।
20: धन्यवाद
18: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
20: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से, लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे। जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फाल्स मट के जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पे भूरा धब्बा आ जाता है, साथ ही साथ जो है इसमें सीथ ब्लाइट होता है
18: जी।
20: सीथ ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है, जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है।
18: अच्छा।
20: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं। किसान भाई जानते होंगे कि जिंक के कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक की कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फाल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पर वो चीज़ लग जाता है।
18: अच्छा।
20: और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है, तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते
18: जी।
20: इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए, और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फाल्स मट या कलिया बीमारी पे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे, और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है। इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें। अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो, क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग, और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
20: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूं तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा, और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया, मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं, तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं, तो उस कारक को आपको मारना होगा। अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
0: खुद ब खुद मर जाएगा।
20: जी अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है, क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त, क्योंकि खेत आपका खाली होगा, तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है, और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे, या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं, आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
0: अच्छा।
20: और धूप लगने कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं
0: गहरी जुताई से।
20: जी
0: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
20: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है, जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
0: अच्छा।
20: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है, और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टेमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं, तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा, जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है, और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है, जो सुगंधित धान है, उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो 2 फफूंद नाशक है उसमें 1 फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा, और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है, वो बाद के अवस्था में भी जो पौधा आपका बड़ा हो जाता है तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं, बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है, इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में बिचड़ा लगाएं।
0: एक जो सवाल है किसान भाइयों की तरफ से आता है डॉक्टर साहब की, कम पानी और अधिक पानी की स्थिति में कौन से रोग लगते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान।
20: जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है जिसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता है,
0: अधिक जमा हो जाता है। जी,
20: तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे। और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से दो बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्राय बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती की, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप। उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमा, जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में दो बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है जिसको कि पर्णअंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंद नाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया सीत ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था सीत ब्लाइट के बारे में
0: जी।
20: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो सीत रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पर ये सांप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी, एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए, सीत ब्लाइट के बचाव करने के लिए आप वेलिडामाइसिन का आप जो है, अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
21: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
16: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
22: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
17: हर घर सूर्य घर।
19: हरियाली से खुशहाली तक।
18: नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, और साथ ही स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अंग उमंग में। जी हां, हम किसानों के लिए बहुत सारे चर्चाएं लेकर आते हैं, लेकिन जब हमारे किसान बंधु हैं, हमारे किसान भाई बहने हैं और उनके लिए साथ ही कृषि में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उनसे जुड़ी लोकगीत ना हो तो ये थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा। हमारे स्थानीय कलाकार साथ ही यहाँ पर मुख्य गायक हैं रविंद्र रामपुरी जी, और इनका साथ देने के लिए हैं ताराकांत ठाकुर जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, साथ ही पंडित रघुनंदन जी। आइए सुनते हैं।

0: अभी आपने एक बहुत ही मधुर कृषि गीत सुना और इसके बाद एक और खास कृषि गीत, और इसमें आप सुनेंगे कि क्या दिनचर्या होती है किसानों की। इस लोकगीत के द्वारा हम पेश करते हैं हमारे किसान बंधुओं की दिनचर्या। आइए सुनते हैं हमारे मुख्य गायक ताराकांत ठाकुर जी, इनके साथ हैं बम बम जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, पंडित रघुनंदन जी और रविंद्र रामपुरी जी।
1: सुबह उठते ही किसान कैसे खुश हो जाता है, कैसे अपने हल बैलों को खिला पिला के तैयार कर लेता है, कैसे अपने घर वाली को, घर के बाल बच्चे को खेत पे आने के लिए कहते हैं, और वो किस तरह से परेशान रहते हैं और उस परेशानी में क्या खुशी मनाते हैं। आइए हम इस लोकगीत के माध्यम से आपको सुनाते हैं।

0: इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर ग्रामीण जीवन का एक दृश्य है वो ज़रूर आया होगा। लोकगीत की एक यही विशेषता होती है कि ये अपने आप में सारे विश्व को, चाहे वो गांव से लेकर शहर हो, हर संस्कृति को समाये रखता है। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए अंग उमंग कार्यक्रम। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर

सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G/7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन के बारे में। सघन बागवानी क्या होती है और अगर सघन बागवानी करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही छत्रक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे आम के पौधों के लिए, पेड़ के लिए फायदेमंद होता है, इस बारे में आज विस्तार से जानेंगे डॉक्टर कुमारी करुणा से। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सघन बागवानी क्या है।
1: हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सघन बागवानी जो है एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम दूरी पर और कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित जमीन और कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले फलों या सब्जियों का उत्पादन प्राप्त करना है।
0: जी मैम, तो मैम अगर हम सघन बागवानी की बात करते हैं तो क्या सघन बागवानी करने से कुछ फायदे होते हैं?
1: हाँ, कम जमीन में कई गुना अधिक पैदावार मिलती है इसको सघन बागवानी करने से, और फलों का आकार एवं गुणवत्ता भी अच्छा हो जाता है। तुराई हो, सिंचाई हो एवं देखरेख करना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पौधे के साइज को मेंटेन किया जाता है, छोटा रखा जाता है, तो जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। साथ ही साथ किसानों की आय पारंपरिक खेती की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सघन बागवानी की विशेषताएं क्या हैं और इसे क्यों करना चाहिए?
1: सघन बागवानी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो इस पद्धति में मजदूर भी कम लगता है क्योंकि पौधा को छोटा रखा जाता है जिससे पौधे पर किया जाने वाला कार्य आसानी से हो जाता है। इस पद्धति में पूरे जमीन का सही सही उपयोग हो जाता है। सघन बागवानी में जैसे खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, फफूंदनाशी, कीटनाशी इत्यादि का लगभग पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है जिससे कि परंपरागत बागवानी की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस बागवानी को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक होती है और हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक फलों की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ खेती एवं बाग लगाने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके चलते कि जमीन थोड़ा सा कम होते जा रहा है। अगर हम इस पद्धति से बागवानी करेंगे तो जो मेरी बढ़ती जनसंख्या का डिमांड है फल और सब्जी का वो मिल पाएगा।
0: जी मैम। मैम, अगर हम सघन बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई बहन तो क्या उसमें कुछ विशेष किस्म होते हैं जिनका चयन करना चाहिए?
1: हाँ, सघन बागवानी के लिए ये होता है कि सभी का स्ट्रक्चर, पौधा हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, थोड़ा अलग अलग होता है। कोई अधिक ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है, तो इसमें भी पौधा में भी आम में भी कुछ बौना किस्म होते हैं तो उसको प्रीफर करते हैं सघन बागवानी के लिए। इसमें वैरायटी की बात करें तो है आम्रपाली, जैसे इसको किचन गार्डन के लिए भी सूटेबल माना गया है क्योंकि इसमें ग्रोथ कम होता है, कम स्पेस लेता है, तो आम्रपाली लगा सकते हैं सघन बागवानी में। मल्लिका का भी थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा ही है, पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिका है, पूसा श्रेष्ठ है, ये सब का जो ढांचा होता है पौधा का वो थोड़ा छोटा होता है, इसको प्रीफर कर सकते हैं सघन बागवानी के लिए।
0: जी मैम। मैम, क्या सघन बागवानी करने के लिए भूमि की कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है और पौधरोपण कैसे करते हैं?
1: भूमि की तैयारी के लिए कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो परंपरागत बागवानी के लिए जो तैयारी होती है पौधा लगाने का, वही तैयारी इसमें भी की जाती है। सिर्फ पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी जब हम रेखांकन करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितना रखें
0: जी।
1: तो एक आम के लिए अगर सघन बागवानी करनी है तो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 5 मीटर बाय 5 मीटर है। और पौधा लगाने के लिए जो गड्ढा बनाएंगे तो उसमें 60 घन सेंटीमीटर का गड्ढा मई के महीने में खोदकर उसको फिर मानसून आने से पहले 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर भर देना चाहिए। पौधरोपण के लिए आम के लिए पौधा से पौधा की दूरी, और ये जो उच्च गुणवत्ता वाला पौधा जो होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसे किसी विश्वसनीय पौधशाला या शोध संस्थान से ही लेना चाहिए। फिर उन्हें जुलाई के मध्य तक सावधानीपूर्वक तैयार गड्ढों में विधिवत रोप देते हैं और रोपने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं।
0: जी मैम, अब आप हमें सिंचाई के बारे में विस्तार से बताइए कि सिंचाई कैसे करनी चाहिए।
1: हाँ, अगर हम सिंचाई प्रथम 2 वर्षों तक आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, जब लगे कि हाँ पौधे को आप जरूरत है पानी का, तो उसको 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि 2 साल के पौधे बहुत छोटे होते हैं 2 साल तक, तो उसका बहुत प्रॉपर केयर करना पड़ता है, कब उसे पानी की आवश्यकता है किसान भाई को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद जब बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसको परंपरागत तरीके से अगर हम सिंचाई करें तो ठंडा में यानी जाड़े में 15 दिन के अंतराल पर और गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। और अगर सूक्ष्म सिंचाई द्वारा हम पानी अगर देते हैं तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी पौधा को देना चाहिए, उससे पानी का बचत भी होता है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: जी मैम। मैम, अब हम छत्रक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: सघन बागवानी में प्रारंभिक कटाई छटाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। पौधरोपण के 1 वर्ष बाद मुख्य तने को भूमि के सतह से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर से दिसंबर जनवरी में काटते हैं। तनों की कटी सतह पर फफूंदनाशक दवा का पानी में या अंडी के तेल में घोल बनाकर अच्छी तरह लगाना चाहिए। कटाई के बाद तनों पर अप्रैल से बहुतायत में कल्ले निकलते हैं, जिनमें से केवल 4 कल्लों को चारों दिशाओं में बढ़ने देते हैं। शेष कल्लों को यथाशीघ्र काट देना चाहिए। फिर इन्हीं कल्लों को पुनः 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काटते हैं। इन 4 कल्लों को चारों कल्लों से पुनः 2 से 3 कल्लों का सृजन होने देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 वर्ष में पौधे का वांछित छतरीनुमा आकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पेड़ में जुलाई में निकले लगभग 80% शाखाओं में मंजर आ जाता है, फलस्वरूप अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। 10 वर्ष बाद पौधे से लगभग 10 से 12% टहनियाँ, जैसे सूखी टहनियाँ हो या रोगग्रस्त टहनियाँ हो, तो प्रतिवर्ष निकालते रहना चाहिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिले और स्वस्थ कल्लों का सृजन हो सके। इस प्रकार पौधों का सामयिक प्रबंधन करके 20 से 25 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण भरपूर फलन ली जा सकती है।
0: जी मैम, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो 20 से 25 वर्ष तक अच्छे फल मिल सकते हैं हमें। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से आम की सघन बागवानी करें और सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो हमारे किसान भाई बहन जो बागवानी करते हैं, आप मैम की बातें जो मैम ने बताई है उन बातों का ध्यान रखिए, और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे फल आएंगे, गुणवत्ता युक्त फल आएंगे और अधिक फल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फास्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से सस्य फसलों के लिए और बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
2: उमा अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान गेहूं मक्का जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है और हमारी जो बिहार की किसान हैं उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें और सस्य फसल जैसे धान गेहूं मक्का जौ इत्यादि।
0: तो मैम फास्फोरस क्या है अब ये बताइए।
2: जी फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं की अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है अगर आप सुने होंगे एटीपी एडीपी न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं पौधा है आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी कोशिकाओं के लिए फास्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएं। तो फास्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रिया हैं जिसमें फास्फोरस जरूरी होती है जैसे कि कोशिका विभाजन प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ऊर्जा संचरण जड़ विकास आपकी फ्लावरिंग पुष्पन और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम सस्य फसलों में अगर हम फास्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है।
2: जी हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है। यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस है हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की जरूरत होती है जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की जरूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फास्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फास्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फास्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
2: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 to 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्ग के होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 to 20 or 30% तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 to 20% यानी 15 to 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल अगर हम बोले कि बिहार की सॉइल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 to 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
2: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फास्फोरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फास्फोरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फास्फोरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्सॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए, उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस की वो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है। तो वहाँ से आप पीएसबी को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक क्या होता है? हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फास्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो। तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहां पे सुखाड़ है वहां पे हम लोग बीज उपचार करें, जहां पे पानी जमाव है वहां पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
2: जी जरूर। फॉस्फोरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
2: थैंक यू वेरी मच उमा।
0: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, कई बार किसान भाई बहनों को मौसम की वजह से या कोई अन्य वजहों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनके पास लागत की भी कमी होती है। और हमारे ऐसे कई सारे किसान भाई बहन हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते। हमारी आज की चर्चा का विषय यही है, कृषि विकास के लिए सरकारी योजनाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसे मैम ने कहा, कृषि में जो सबसे आजकल हमारा फसल, जब फसल बहुत ख़राब हो रहा है बाढ़ के कारण से, सूखा के कारण से, और भी बहुत सारे इस तरह के सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए बहुत सरकारी योजनाएं हैं जिससे भाई किसान भाई बंधु लाभ उठा सकते हैं। और इसकी जानकारी थोड़ा बहुत तो है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से बहुत सारे किसान भाई बंधु उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनको कहाँ से वित्तीय सहायता मिलेगा? बहुत सारे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, तो जानकारी के अभाव में वो लोन नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे स्कीम के बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती। तो आज उसी पे थोड़ा बात करेंगे।
0: सर, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठा सकते हैं।
1: देखिए, बहुत तरह के हैं, जिसमें पहला जो है आय एवं ऋण सहायता। जो कोई भी आप छोटे और जो छोटे सीमांत किसान है उनको आय बढ़ाने के लिए, उनको लोन देने के लिए बहुत सारे स्कीम है। दूसरा जो सबसे मेन है, जो जैसे आजकल बहुत रिस्क है, फसल तैयार है, देखिए इसी बार आम लीची के फसल बहुत खराब हुआ, गेहूं का फसल बहुत खराब हो गया, ऐसे मतलब बेमौसमी जो बरसातें हुई, फिर कभी सूखा पड़ जाने के कारण से, कभी बाढ़ पर, तो उसके लिए जो है जोखिम सुरक्षा योजना, जिसको आप लोग जानते होंगे, फसल बीमा योजना है। फिर उसके बाद सिंचाई के लिए है, फिर और भी बहुत सारा आप में उसमें, जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पॉली हाउस बनाना है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इस सब के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे योजनाएं हैं।
0: यस सर। तो सर, हम शुरुआत करते हैं लोन के लिए कौन कौन से योजनाएं हैं इसके साथ। तो लोन के लिए कौन कौन से,
1: देखिए सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री किसान योजना, उसमें जो है छोटे और सीमांत किसानों को, सब आजकल सभी भाई बंधु इससे पूर्ण रूप से मतलब इसका जानकारी होगा उनको। आजकल सरकार जो है 6,000 रुपये सालाना उनको 3 किस्तों में 2,000 रुपया उनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे अहम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। आप लोग अपने अपने नज़दीकी बैंक में जाके, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके, नहीं तो हमारे अपने कृषि विश्वविद्यालय आके जानकारी इसका प्रदान मतलब ले सकते हैं, कहाँ से ऐसे इसको, कहाँ किन से मिलेंगे, कैसे इसका हम कहाँ अप्लाई करेंगे जिससे हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिल पाए। किसान क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी क्या है, जैसे आपको तुरंत यूज है, तुरंत आपको नीड है, आपकी आवश्यकता पड़ गई, जो कल ही 5,000 रुपया निकालना है, तो आप बैंक तो 5,000 तुरंत आपको लोन देगी नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं जैसे दूसरे कार्ड से निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है जिसमें जो ऋण दर बहुत कम है, अगर आप समय से चुकाते हैं तो 4% ही देना पड़ता है, तो एक तो वो है। दूसरा जो है AIF बोलते हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी जो भंडारण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, लगभग उसमें मतलब आप करोड़ों रुपया तक का उसमें फंड ले सकते हैं।
0: यस सर। तो अभी हमने लोन के बारे में बात की और अभी आपने बताया कि फसल बीमा योजना भी है
1: जी, जी।
0: किसानों को मौसम की वजह से नुकसान।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो कौन कौन से?
1: उसमें जो है सबसे प्रमुख तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें प्राकृतिक विपदा, कीट, बीमारियों से फसल अगर खराब हो रहा है तो उसके लिए दिया जाता है। उसमें भी जैसे दो, उसमें भी अलग अलग स्कीम है, जो रबी फसल है तो अलग है उसमें, और खरीफ है तो अलग है। खरीफ में थोड़ा सा प्रीमियम 2% देना पड़ता है, जैसे एक बीघा में मान लीजिए आपका 20,000 का फसल लगा हुआ है तो उसका लगभग 400 रुपया का आपका प्रीमियम देना पड़ेगा, और जो रबी फसल है उसमें थोड़ा कम देना पड़ता है, 1.5% ही देना पड़ता है। और ऐसे ही है जो आपके जैसे बागवानी फसल है जिसमें साग सब्जी फल फूल ये सब है, उसमें 5% तक देना पड़ता है, लेकिन उससे सारा आपका फसल सुरक्षित हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक विपदा के कारण से बाढ़ सूखा किसी भी कारण से फसल खराब होता है तो उसमें पूरी आपके आपको पूरा उसका जो है मूल्य आपको मिल जाएगा। तो दूसरा है पीएम किसान मानधन योजना, जनधन योजना, और उसमें किसानों के लिए पेंशन दिया जाता है, एक तो ये है। फिर जैसे मैंने बोला सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसका एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया, प्रति ड्रॉप अधिक उपज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब आप कैसे पानी को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें जिससे आपका पानी की बर्बादी भी कम हो और आपकी उपज भी बढ़े। जी
0: तो सर, आजकल हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें, और ये अच्छी बात भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे में बहुत सी लागत की परेशानी आती है, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी कोई खास स्कीम है जिसका फायदा किसान भाई बहनों को मिल सकता है?
1: जी मैम, उसमें जैसे है परंपरागत कृषि विकास योजना, आप भाई बंधु आप लोग अगर सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो इसके बारे में जानकारी आप उपलब्ध कीजिए, और आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या बैंक में भी आप जाके पता कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करना चाहते हैं उनको कम मतलब सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी मिलता है और उस पे उनको लोन मिलता है जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सभी भाई बंधु इसमें जागरूक मतलब इसके बारे में उनको जानकारी होगी, जो भी आप फसल लगाते हैं उससे पहले आपको अपने मिट्टी में कौन कौन उर्वरक उसमें उपलब्ध है, कमी है ज्यादा है, उसकी पहले जानकारी हो जाने। ऐसा होता है कभी कभी देखा गया है जो कुछ उर्वरक तत्व पहले से मौजूद है फिर भी ऊपर से लोग डाले जा रहे हैं तो उल्टा वो लाभ के जगह पे हानि पहुंचाता। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का आप लाभ उठाइए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके तहत जो है लगभग सरकार ने 2,817 करोड़ का बजट इस बार पास किया है। उसके अंतर्गत कोई किसान अगर इसमें डिजिटलाइजेशन ऐप बनाना चाहते, सामान बेचने के लिए जानकारी लेना चाहते तो उसके लिए ये स्कीम है।
0: तो ये कुछ स्कीम्स हैं, अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं जिनका हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं। सर, अगर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहे तो क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मेरा आप सभी भाई बहनों से एक निवेदन है, जो इसके बारे में जानकारी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण से, सही जानकारी नहीं होने के कारण से, अब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो भी ठीक आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है आप या तो कृषि विश्वविद्यालय आइए, आप जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ उस पर आप कॉन्टेक्ट करिए हमें, और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके ग्रामीण विकास बैंक है, बैंक जाइए वहां से जानकारी उपलब्ध कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाया है, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जिन भी स्कीम्स के बारे में बताया, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन उन स्कीम्स का सुविधा अनुसार लाभ जरूर लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: किसान भाई बहनों, आज की चर्चा से उम्मीद है कि आपको काफ़ी लाभ होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिला होगा सरकारी योजनाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर,
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: B बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशु पालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहाँ वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है, या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी, या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था, और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है, या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं, या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए, और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा, और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा, और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले, तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो, पर

0: लिखिए जरूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उससे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है, तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगी। उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर। 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि।
0: नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 एफएम ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
11: जी धन्यवाद।
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
11: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। खास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
0: जी,
11: जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूलगोभी में ज्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
11: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी जी,
11: वो चाहे कोई भी फसल हो। तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है और पछेती फूलगोभी भी आती है। तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम।
0: अच्छा,
11: तो इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है। तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज़ हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज़ आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी माघी आती है, जायंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है, इस प्रकार की कई वेराइटीज़ हैं जो हम बचेती मौसम में लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
11: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
0: अच्छा।
11: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं, और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं, और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपके खेत के हिसाब से, कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
0: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
11: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूल गोभी का बीज है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वेराइटीज़ है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
0: अच्छा।
11: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
0: अच्छा।
11: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
0: अवशेष
11: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
0: जी।
11: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं, उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पिछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए, और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं।
0: अच्छा।
11: सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप दो क्यारियां बना रहे हैं, तीन क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए, और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद एक या दो दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है, लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
0: अच्छा,
11: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
0: मतलब
11: तैयार होती है,
0: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
11: जी, अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
0: होती है,
11: बड़ी बढ़ जाती है। तो इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया, और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी, और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए, डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए।
11: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने तीन भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
0: अच्छा।
11: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में, मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा।
11: और इसके अलावा जो एक खरपतवार, जो खाद की जो मात्रा होती है, वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120-80-80 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास जो है वो आपके मुख्य खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए, और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में, और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद आपने जब रोपाई कर दिया, रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
0: अच्छा
11: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फॉस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फॉस्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन, बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
0: तो इसके बारे में जानेंगे, विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
11: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
0: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
11: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
0: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
11: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
0: है
11: फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है, उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
0: जी,
11: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
0: मतलब
11: तो उसका रंग ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85-90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2-3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
0: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
11: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं, और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
0: अच्छा,
11: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में 2-3 तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
0: अच्छा,
11: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
0: जी।
11: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किस में उगाए, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए, और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विप टेल।
0: अच्छा,
11: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विप टेल होता है एक मॉलीबिडनम की कमी से।
0: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विप टेल?
11: हाँ, विप टेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है।
0: अच्छा,
11: तो उसको विप टेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहां की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
0: अच्छा,
11: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
0: अच्छा,
11: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूलगोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
0: नुकसान पहुंचा,
11: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, या तो फॉर्मेल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उसे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 g/l पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए, और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
1: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
1: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
1: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
1: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
1: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं, लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है,
1: जी
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओं, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहां से काना हराडा

0: स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया।
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
1: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
6: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: 2 मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे कैसे?
8: अरे जोर से मारना।
7: सैम, है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम, है ना? क्या तुम लोग तैयार हो?
8: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
7: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग। कैसा प्रयोग? आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
8: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
7: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
8: अच्छा
7: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
6: अच्छा।
7: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
8: हाँ, ठीक है।
7: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
6: घंटी भी?
7: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
9: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
7: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
9: हाँ हाँ,
7: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
9: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
8: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है!
9: अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
8: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है! अरे वाह,
7: सिग्नल मिला?
8: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
3: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे। लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है।

0: पर ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है!
0: वाह, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्यों हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: जहाज बुरी तरह हिल रहा है।
0: अरे बचाओ, अरे तो पानी भर गया। जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
5: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, निकलो, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ और हेड लाइट सिग्नल भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्पैच,
5: जल्दी जल्दी करो।
0: जीवन रक्षक नाव को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस, टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास
3: नहीं होता। Mr. Marconi.
6: जी।
3: अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
6: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।

20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।

0: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
7: कौन सी कहानी टीकी?
6: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
6: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
7: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
6: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
11: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
10: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
12: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
10: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
13: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
10: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
14: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
10: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
15: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
16: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
15: और लाइट बिल के,
16: अब 0 रुपए कैसे दूं?
15: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
17: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
18: हर घर सूर्य घर।
19: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
15: उन्नत कृषि।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन।
20: दोस्तों स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावना है, क्या चुनौतियां आती है, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
21: नमस्कार।
20: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
21: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पर काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं। इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं। बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
20: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
21: जी जी।
20: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है।
21: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
20: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो।
21: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है। इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हमको हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
21: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
0: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
21: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा, एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीज उपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके। एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती, तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, और मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में NPK का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से NPK की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटैसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
20: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
21: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
20: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
21: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
20: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
21: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पे हार्वेस्टिंग करते हैं।
20: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
21: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहां मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है BU सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है और भारत सरकार, बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है, तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
20: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
21: बहुत बहुत धन्यवाद।
20: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी की खुरपका मुंहपका, HS यानी की गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशु पालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल

0: से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज जरूरत इसलिए पड़ गई है कि आज चाहे वो गरीब तबके के हो या बहुत बड़े घराने से हो, वो बीमारी को बेच नहीं सकता और अपने स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम। तो प्राकृतिक खेती है अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, खुद आने वाले जो पीढ़ी है उनको बचाने के लिए इसलिए जरूरत है।
1: तो सर, जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की जरूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिसे जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
0: देखिए, रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते, अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। और बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लिया जी वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज्यादा, वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है। और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं, या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है, जो कि हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए जरूरत है।
1: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं।
0: जी,
1: तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
0: देखिए, प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है, ये हमारे पुराने पद्धति है जो की हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो की गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे चीज को जो है, ये जब से ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा बड़ा संसाधन होता था उनमें वो व्यवस्थित करके रखते थे, जो कि अपना ही बीज से वो उत्पाद लेते थे और शुद्ध लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज डंकल प्रस्ताव जब से आया अपने देश में, उनके बाद हमारे देश की कृषि में तो बहुत ज्यादा मतलब उपज आया, इतना आया कि हम विदेशों को भी दे रहे हैं। लेकिन परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो तो देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं, तो घी ये दही भी हो जाएगा। तो ये सारे चीजों को जब हम अपनी खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होते हैं, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा। मैम,
1: बिल्कुल। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना। तो सर, इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पे पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
0: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो

0: वो हमारा सारा चीज स्वस्थ हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहां पर हम रसायन डाल दिए वहां के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा, यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे, इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा। मैम, तो वो बढ़ेगा कैसे? तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को, मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है, तो जीवामृत कहाँ से आएगा? तो जीवामृत का घर कहाँ है? तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में। और वो मिट्टी कहाँ है? जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। हम रसायन कहाँ नहीं डाले हैं? तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं, वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं। और वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का सॉइल जीवित है, उसमें अभी भी जीवाणु करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद है। वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले और गाय का मूत्र और बेसन गुड़, ये छोटा छोटा सामग्री है जो कि हम जीवामृत के रूप में बना के मिट्टी में डालते हैं, तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
1: तो सर, आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा, तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
0: बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम, कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन पर टिके हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो एकाएक आप रसायन को अगर हटा के प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाते हैं तो पहला ईयर में आपका कुछ उत्पाद घटेगा, इसलिए कि उस मिट्टी को रसायन की आदत पड़ गई है। एकाएक अगर हम रसायन को हटाते हैं तो हमारा उत्पाद कुछ घटता है, लेकिन अगर हम लगातार इस पर 3 साल काम करेंगे तो दूसरा ईयर क्या होगा कि हमारा उत्पाद लेवल में आएगा, तीसरा ईयर मेरा वो उत्पाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस इनपुट को जो आप प्राकृतिक खेती के तहत बनाते हैं उनको डालते जाएंगे और फसल चक्र को अपनाएंगे तो आपका उत्पाद घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैम ये है कि आपके फसल में लगने वाले लागत बहुत कम आएगा, क्योंकि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं, लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं, जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका डीएपी के रूप में घन जीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पर्सन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं, तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है, जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
1: ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जिन मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो चीजें हो जाती है मैनेज, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए।
0: थैंक यू मैम।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
10: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है, इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
1: तो मैम अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें तो किस

0: तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है।
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
1: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
0: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
1: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फुर पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में दो बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंग

0: तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इससे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के एक हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोदकर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में एक हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है, इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी हैं। जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं मैम KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है।
10: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है। गेंदा का महत्व

0: बहुत ज्यादा है आज के डेट में, हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफ़ी उपलब्ध है इसके लिए।
1: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
0: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों के गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है, और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार के डिमांड पे, मांग पर, इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
1: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
0: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धित प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पुसा अर्पिता है, पुसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बैंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं, और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं, तो उनके पास अपना पौधा रहेगा, और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है, जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए, बालू की मात्रा रहनी चाहिए, क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है, अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है, जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे, और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे, और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे। और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं, एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
1: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
0: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6-7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है, और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उससे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करे, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सब

0: सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है। 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4 × 4 = 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है, और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर, 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करें, नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें
1: जी मैम।
0: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है, लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं। और सबसे बड़ा कमजोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में कि यहाँ का जो बाजार है, भागलपुर का जो बाजार है फूलों का बाजार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाजार पर कलकत्ता के ही बाजार का कब्जा था, और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है, लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है
1: जी मैम। अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें। क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है, और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसके लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है और वो अरका भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं, IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र। और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
1: जी मैम,
0: और वो उसको करना प्रारंभ करने, और पैसे की कमी नहीं है इसमें
1: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाज़ार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए। और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू उमा।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर।
2: आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
9: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30

0: किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं, खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक, उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही।

थक गई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: Again, there is a table in which there are 5 different columns. Column 1 heading says activities. Column 2 heading says always, 4. Column 3 heading says often, 3. Column 4 heading says sometimes, 2. And column 5 heading says rarely, 1. On this page, this table has 2 rows and the other rows are continued on the next page. First row says 1. I help others even when they don't ask for it. And second row says, I take responsibilities for my personal duties like keeping my books, uniform clean, homework, etc. And the other part of the table is left blank so that it can be filled up by the students. Page number 182. The table continues. On this page, there are 5 different rows. The first row says, I enjoy volunteering in community services like cleaning the park, participating in planting. Second row says, I give away toys, books or clothes to children in need. Third row says, I show up some kindness actions like giving up my seat on a bus for an elderly person, helping a blind person on the road, sharing toys with friends, expressing gratitude for all those who help me. Row 4 says, I help with household chores without being asked. And row 5 says, I do my best in whatever I do, whether it is schoolwork, playing sports or helping at home. The other part of this table is left blank so that the students can fill it up. Jnana Yoga, the path of knowledge. Teacher's observation. There is a table given. This table again has 5 different columns. Column 1 heading says observation. Column 2 heading says always 4. Column 3 heading says often 3. Column 4 heading says sometimes 2. And column 5 heading says rarely 1. There are 3 different rows in this table, out of which 1 row is on this page and the remaining 2 rows are on the next page. The 1 row that is on this page, it says asks thoughtful questions in class. And the remaining part of this row is left blank to be filled up by the teachers. Page number 183. The same table continues. The second row of that table says, is curious to know more about self and the world. The third row says, applies lessons from stories to real life. And the other part of this table is left blank so that it can be filled up by the teachers. Self-observation. Read each statement carefully. Circle the number that best represents you. There is a table given in which there are 5 different columns. Column 1 heading says activities. Column 2 heading says always 4. Column 3 heading says often 3. Column 4 heading says sometimes 2. And column 5 heading says rarely 1. There are 5 different rows in this table. Row 1 says, I do not hesitate to ask questions with my teacher for better understanding. Row 2 says, I am curious to learn more about myself. Row 3 says, I enjoy exploring new things around me. Row 4 says, I follow good lessons I learn from stories. And row 5 says, I like to discuss values with my friends and family. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up by the students according to their self-observation. Bhakti Yoga, the path of devotion, teacher's observation. there is a table given in which again there are five different columns. First column says observation. Second column says always, 4. Third column says often, 3. Fourth column says sometimes, 2. And fifth column says rarely, 1. There are two different rows in this table. The first row says participates in prayer, bhajan or chanting. And the second row says expresses love and respect for teachers and parents. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up according to the teacher's observation. Page number 184, self-observation. Read each statement carefully. Circle the number that best represents you. There is a table given in which there are five different columns. First column says activities. Second column says always, 4. Third column says often, 3. Fourth column says sometimes, 2. And fifth column says rarely, 1. There are five different rows in this table. First row says I take blessings from my parents, teachers and elders every day. Second row says I offer prayer when I wake up, before having meals and before sleeping. Third row says I enjoy listening to bhajans. Fourth row says I like to sit quietly and observe my breath for at least 10 minutes in a day. And fifth row says I trust my parents and God. The remaining part of this table is left blank so that it can be filled up by the students according to their self-observation. Yoga Sadhana 1. Asana. Hast Uttanasana. Utkatasana. Virbhadrasana. Parvatasana. Janu Shirshasana. Gomukhasana. Simha Garjanasana. Trikonasana variation. Ardh Matsyendrasana. Matsyasana. Sarpasana. Tiryak Bhujangasana. There is a table given in which there are four different columns and four different rows, out of which one row is at this page and remaining three rows are on the next page. Column 1 heading says criteria. Column 2 says excellent and it has a very happy smiling face. Column 3 says good and it has a happy face. And column 4 says scope for improvement and it has a neutral face. Row 1 says demonstration of asanas. Demonstration of asanas is explained under various criteria further in different columns. Under excellent criteria, it says performs all asanas correctly. Under good criteria, it says performs all asanas correctly but needs minor corrections. Under scope for improvement criteria, it says requires repeated guidance. Page number 185. The remaining table follows here. In this table, row 2 says follow instruction. Under excellent criteria, it says very attentive. Under good criteria, it says attentive. Under scope for improvement criteria, it says requires repeated guidance. Row 3 says identification of asanas. Under excellent criteria, it says correctly identifies all asanas. Under good criteria, it says identifies most asanas correctly. Under scope for improvement criteria, it says requires repeated guidance. Row 4 says effort and attitude. Under excellent criteria, it says curious and focused. under good criteria, it says participates with interest, and under scope for improvement criteria, it says easily distracted. 2. Mudra and Pranayama. There is a table given in which there are 4 different columns and 3 different rows. First column heading says criteria. Second column heading says excellent. Third column heading says good. And fourth column heading says scope for improvement. The first row says om chanting, and under excellent criteria it says rhythmic. Under good criteria it says requires minor corrections. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. Row 2 says identification and demonstration of mudras. Under excellent it says identifies and performs. Under good it says can identify but difficult to perform. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. Row 3 says identification and demonstration of different pranayama. Under excellent it says identifies and performs. Under good it says can identify but difficult to perform. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. This marks chapter 7, Yoga Sadhana, the ending of unit number 3.
1: Khel Yoga. You were just listening to this audiobook, textbook of physical education and well-being for class 5. Narration, Meha Kheda. Sound recordist, Manju Kumari. Assistance in production, Jagbandhu Jana.
2: नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो. नाटक देखो, आओ.
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे. हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ. इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा.
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं. अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है.
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई.
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय.
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है.
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक.
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और.
4: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ.
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं.
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी.
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं.
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं.
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ. बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात. अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी. UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ.
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य.
9: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें.
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
9: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
9: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
9: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
14: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
13: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
15: हर घर सूर्य घर।
16: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
17: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
16: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
17: आपकी सेहत की बातें,
16: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
17: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
16: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
17: वो कहाँ पर?
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
17: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
16: उन्नत कृषि।
9: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ के खास कार्यक्रम, जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की, और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें। जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएं। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।
18: धन्यवाद
9: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
18: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से, लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे। जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फाल्स मट के जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्णंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पे भूरा धब्बा आ जाता है, साथ ही साथ जो है इसमें शीत ब्लाइट होता है
9: जी।
18: शीत ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है।
9: अच्छा।
18: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं। किसान भाई जानते होंगे कि जिंक की कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक की कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फाल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पर वो चीज़ लग जाता है।
9: अच्छा।
18: और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है, तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते
19: जी।
18: इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फाल्स मट या कलिया बीमारी पे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है। इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें। अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं।
19: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए।
18: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूँ तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं तो उस कारक को आपको मारना होगा। अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
19: खुद ब खुद मर जाएगा
18: जी। अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है
19: बिल्कुल,
18: तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त क्योंकि खेत आपका खाली होगा तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
19: अच्छा।
18: और धूप लगने के कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं
19: गहरी जुताई से।
18: जी
19: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
18: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
19: अच्छा।
18: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं बीज खरीदते हैं फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है जो सुगंधित धान है उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो 2 फफूंद नाशक है उसमें 1 फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो बाद के अवस्था में भी जब पौधा आपका बड़ा हो जाता है तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में बिचड़ा लगाएं।
19: एक जो सवाल है किसान भाइयों की तरफ से आता है डॉक्टर साहब, कि कम पानी और अधिक पानी की स्थिति में कौन से रोग लगते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान।
18: जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है, इसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता है,
19: अधिक जमा हो जाता है।
18: तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से दो बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्रायः बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती की, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है, जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप। उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए, तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है, जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड, मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की, प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमार, जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में दो बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है, जिसको कि पर्णअंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंद नाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है, जिसको कि कहा गया शीत ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था शीत ब्लाइट के बारे में
19: जी।
18: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो शीत रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पर ये सांप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी, एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए, शीत ब्लाइट के बचाव करने के लिए, आप वेलिडामाइसिन का आप जो है, अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
19: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
20: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
21: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
20: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
22: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
14: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
23: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
15: हर घर सूर्य घर।
17: हरियाली से खुशहाली तक।
19: नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, और साथ ही स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अंग उमंग में। जी हां, हम किसानों के लिए बहुत सारी चर्चाएं लेकर आते हैं, लेकिन जब हमारे किसान बंधु हैं, हमारे किसान भाई बहने हैं, और उनके लिए साथ ही कृषि में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उनसे जुड़ी लोकगीत ना हो तो ये थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा। हमारे स्थानीय कलाकार साथ ही यहाँ पर मुख्य गायक हैं रविंद्र रामपुरी जी, और इनका साथ देने के लिए हैं ताराकांत ठाकुर जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, साथ ही पंडित रघुनंदन जी। आइए सुनते हैं।

0: अभी आपने एक बहुत ही मधुर कृषि गीत सुना और इसके बाद एक और खास कृषि गीत, और इसमें आप सुनेंगे कि क्या दिनचर्या होती है किसानों की। इस लोकगीत के द्वारा हम पेश करते हैं हमारे किसान बंधुओं की दिनचर्या। आइए सुनते हैं हमारे मुख्य गायक ताराकांत ठाकुर जी, इनके साथ हैं बम बम जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, पंडित रघुनंदन जी और रविंद्र रामपुरी जी।
1: सुबह उठते ही किसान कैसे खुश हो जाता है, कैसे अपने हल बैलों को खिला पिला के तैयार कर लेता है, कैसे अपने घर वाली को, घर के बाल बच्चे को खेत पे आने के लिए कहते हैं, और वो किस तरह से परेशान रहते हैं और उस परेशानी में क्या खुशी मनाते हैं। आइए हम इस लोकगीत के माध्यम से आपको सुनाते हैं।

0: इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर ग्रामीण जीवन का एक दृश्य है वो ज़रूर आया होगा। लोकगीत की एक यही विशेषता होती है कि ये अपने आप में सारे विश्व को, चाहे वो गांव से लेकर शहर हो, हर संस्कृति को समाये रखता है। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए अंग उमंग कार्यक्रम। नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8 बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन के बारे में। सघन बागवानी क्या होती है और अगर सघन बागवानी करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही छत्रक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे आम के पौधों के लिए, पेड़ के लिए फायदेमंद होता है, इस बारे में आज विस्तार से जानेंगे डॉक्टर कुमारी करुणा से। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सघन बागवानी क्या है।
1: हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सघन बागवानी जो है एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम दूरी पर और कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित जमीन और कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले फलों या सब्जियों का उत्पादन प्राप्त करना है।
0: जी मैम, तो मैम अगर हम सघन बागवानी की बात करते हैं तो क्या सघन बागवानी करने से कुछ फायदे होते हैं?
1: हाँ, कम जमीन में कई गुना अधिक पैदावार मिलती है इसको सघन बागवानी करने से, और फलों का आकार एवं गुणवत्ता भी अच्छा हो जाता है। तुराई हो, सिंचाई हो एवं देखरेख करना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पौधे के साइज को मेंटेन किया जाता है, छोटा रखा जाता है, तो जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। साथ ही साथ किसानों की आय पारंपरिक खेती की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सघन बागवानी की विशेषताएं क्या हैं और इसे क्यों करना चाहिए?
1: सघन बागवानी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो इस पद्धति में मजदूर भी कम लगता है क्योंकि पौधा को छोटा रखा जाता है जिससे पौधे पर किया जाने वाला कार्य आसानी से हो जाता है। इस पद्धति में पूरे जमीन का सही सही उपयोग हो जाता है। सघन बागवानी में जैसे खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, फफूंदनाशी, कीटनाशी इत्यादि का लगभग पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है जिससे कि परंपरागत बागवानी की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस बागवानी को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक होती है और हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक फलों की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ खेती एवं बाग लगाने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके चलते कि जमीन थोड़ा सा कम होते जा रहा है। अगर हम इस पद्धति से बागवानी करेंगे तो जो मेरी बढ़ती जनसंख्या का डिमांड है फल और सब्जी का, वो मिल पाएगा।
0: जी मैम। मैम, अगर हम सघन बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई बहन तो क्या उसमें कुछ विशेष किस्म होते हैं जिनका चयन करना चाहिए?
1: सघन बागवानी के लिए ये होता है कि सभी का स्ट्रक्चर, पौधा हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, थोड़ा अलग अलग होता है। कोई अधिक ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है, तो इसमें भी पौधा में भी आम में भी कुछ बौना किस्म होते हैं तो उसको प्रीफर करते हैं सघन बागवानी के लिए। इसमें वैरायटी की बात करें तो है आम्रपाली, जैसे इसको किचन गार्डन के लिए भी सूटेबल माना गया है क्योंकि इसमें ग्रोथ कम होता है, कम स्पेस लेता है, तो आम्रपाली लगा सकते हैं सघन बागवानी में। मल्लिका का भी थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा ही है। पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिका है, पूसा श्रेष्ठ है, ये सब का जो ढांचा होता है पौधा

0: करनी है तो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 5 मीटर बाय 5 मीटर है। और पौधा लगाने के लिए जो गड्ढा बनाएंगे तो उसमें 60 घन सेंटीमीटर का गड्ढा मई के महीने में खोदकर उसको फिर मानसून आने से पहले 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर भर देना चाहिए। पौधरोपण के लिए आम के लिए पौधा से पौधा की दूरी, और ये जो उच्च गुणवत्ता वाला पौधा जो होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसे किसी विश्वसनीय पौधशाला या शोध संस्थान से ही लेना चाहिए। फिर उन्हें जुलाई के मध्य तक सावधानी पूर्वक तैयार गड्ढों में विधिवत रोप देते हैं और रोपने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं।
1: जी मैम, अब आप हमें सिंचाई के बारे में विस्तार से बताइए कि सिंचाई कैसे करनी चाहिए।
0: हाँ, अगर हम सिंचाई प्रथम 2 वर्षों तक आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, जब लगे कि हाँ पौधे को आप जरूरत है पानी का, तो उसको 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि 2 साल के पौधे बहुत छोटे होते हैं 2 साल तक, तो उसका बहुत प्रॉपर केयर करना पड़ता है, कब उसे पानी की आवश्यकता है किसान भाई को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद जब बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसको परंपरागत तरीके से अगर हम सिंचाई करें तो ठंडा में यानी जाड़े में 15 दिन के अंतराल पर और गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। और अगर सूक्ष्म सिंचाई द्वारा हम पानी अगर देते हैं तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी पौधा को देना चाहिए, उससे पानी का बचत भी होता है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: जी मैम, मैम अब हम छत्रक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करेंगे।
0: सघन बागवानी में प्रारंभिक कटाई छटाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। पौधरोपण के 1 वर्ष बाद मुख्य तने को भूमि के सतह से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर से दिसंबर जनवरी में काटते हैं। तनों की कटी सतह पर फफूंदनाशक दवा का पानी में या अंडी के तेल में घोल बनाकर अच्छी तरह लगाना चाहिए। कटाई के बाद तनों पर अप्रैल से बहुतायत में कल्ले निकलते हैं, जिनमें से केवल 4 कल्लों को चारों दिशाओं में बढ़ने देते हैं। शेष कल्लों को यथाशीघ्र काट देना चाहिए। फिर इन्हीं कल्लों को पुनः 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काटते हैं। इन 4 कल्लों को चारों कल्लों से पुनः 2 से 3 कल्लों का सृजन होने देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 वर्ष में पौधे का वांछित छतरीनुमा आकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पेड़ में जुलाई में निकले लगभग 80% शाखाओं में मंजर आ जाता है, फलस्वरूप अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। 10 वर्ष बाद पौधे से लगभग 10 से 12% टहनियाँ, जैसे सूखी टहनियाँ हो या रोगग्रस्त टहनियाँ हो, तो प्रतिवर्ष निकालते रहना चाहिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिले और स्वस्थ कल्लों का सृजन हो सके। इस प्रकार पौधों का सामयिक प्रबंधन करके 20 से 25 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण भरपूर फलन ली जा सकती है।
1: जी मैम, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो 20 से 25 वर्ष तक अच्छे फल मिल सकते हैं हमें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से आम की सघन बागवानी करें और सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाई बहन जो बागवानी करते हैं, आप मैम की बातें जो मैम ने बताई है उन बातों का ध्यान रखिए, और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे फल आएंगे, गुणवत्ता युक्त फल आएंगे और अधिक फल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि कृषि
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फास्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण

0: खास तौर से सस्य फसलों के लिए और बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है, इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
1: उमा अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है और हमारी जो बिहार की किसान है उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: तो मैम फास्फोरस क्या है अब ये बताइए।
1: जी फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है अगर आप सुने होंगे एटीपी, एडीपी, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फास्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। तो फास्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फास्फोरस जरूरी होती है जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम सस्य फसलों में अगर हम फास्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है।
1: जी हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है। यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की ज़रूरत होती है जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है तो वैसे फास्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फास्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फास्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
1: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 to 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 to 20 or 30% तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 to 20% यानी 15 to 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने के टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 to 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
1: ये बहुत अहम पहलू हैं। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उसके आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फास्फोरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फास्फोरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फास्फोरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फास्फोरस जो दे रहे हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज़्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूअर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फास्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फास्फोरस की वो फास्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है। तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक क्या होता है? हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फास्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो। तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फास्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
1: जी जरूर। फास्फोरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फास्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू वेरी मच उमा।
0: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, कई बार किसान भाई बहनों को मौसम की वजह से या कोई अनेक वजहों से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनके पास लागत की भी कमी होती है। और हमारे ऐसे कई सारे किसान भाई बहन हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते। हमारी आज की चर्चा का विषय यही है, कृषि विकास के लिए सरकारी योजनाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसे मैम ने कहा, कृषि में जो सबसे आजकल हमारा फसल, जब फसल बहुत ख़राब हो रहा है बाढ़ के कारण से, सूखा के कारण से, और भी बहुत सारे इस तरह के सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए बहुत सरकारी योजनाएं हैं जिससे भाई किसान भाई बंधु लाभ उठा सकते हैं। और इसकी जानकारी थोड़ा बहुत तो है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से बहुत सारे किसान भाई बंधु उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनको कहाँ से वित्तीय सहायता मिलेगा? बहुत सारे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, तो जानकारी के अभाव में वो लोन नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे स्कीम के बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती। तो आज उसी पे थोड़ा बात करेंगे।
0: सर, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठा सकते हैं।
1: देखिए, बहुत तरह के हैं, जिसमें पहला जो है आय एवं ऋण सहायता। जो कोई भी आप छोटे और जो छोटे सीमांत किसान है उनको आय बढ़ाने के लिए, उनको लोन देने के लिए बहुत सारे स्कीम है। दूसरा जो सबसे मेन है, जो जैसे आजकल बहुत रिस्क है, फसल तैयार है, देखिए इसी बार आम लीची के फसल बहुत खराब हुआ, गेहूं का फसल बहुत खराब हो गया, ऐसे मतलब बेमौसमी जो बरसातें हुई, फिर कभी सूखा पड़ जाने के कारण से, कभी बाढ़ पर, तो उसके लिए जो है जोखिम सुरक्षा योजना, जिसको आप लोग जानते होंगे, फसल बीमा योजना है। फिर उसके बाद सिंचाई के लिए है, फिर और भी बहुत सारा आप में उसमें जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पॉली हाउस बनाना है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इस सब के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे योजनाएं हैं।
0: यस सर, तो सर हम शुरुआत करते हैं लोन के लिए कौन कौन से योजनाएं हैं इसके साथ। तो लोन के लिए कौन कौन से,
1: देखिए सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री किसान योजना, उसमें जो है छोटे और सीमांत किसानों को सब आजकल सभी भाई बंधु इससे पूर्ण रूप से मतलब इसका जानकारी होगा उनको। आजकल सरकार जो है 6,000 रुपये सालाना उनको 3 किस्तों में 2,000 रुपया उनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे अहम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। आप लोग अपने अपने नज़दीकी बैंक में जाके, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके, नहीं तो हमारे अपने कृषि विश्वविद्यालय आके जानकारी इसका प्रदान मतलब ले सकते हैं। कहाँ से ऐसे इसको, कहाँ किन से मिलेंगे, कैसे इसका हम कहाँ अप्लाई करेंगे जिससे हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिल पाए। किसान क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी क्या है, जैसे आपको तुरंत यूज है, तुरंत आपको नीड है, आपकी आवश्यकता पड़ गई, जो कल ही 5,000 रुपया निकालना है, तो आप बैंक तो 5,000 तुरंत आपको लोन देगी नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं जैसे दूसरे कार्ड से निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है जिसमें जो ऋण दर बहुत कम है, अगर आप समय से चुकाते हैं तो 4% ही देना पड़ता है, तो एक तो वो है। दूसरा जो है AIF बोलते हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी जो भंडारण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, लगभग उसमें मतलब आप करोड़ों रुपया तक का उसमें फंड ले सकते हैं।
0: यस सर, तो अभी हमने लोन के बारे में बात की और अभी आपने बताया कि फसल बीमा योजना भी है
1: जी,
0: किसानों को मौसम की वजह से नुकसान।
1: बिल्कुल
0: वो कौन कौन से?
1: उसमें जो है सबसे प्रमुख तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें प्राकृतिक विपदा, कीट, बीमारियों से फसल अगर खराब हो रहा है तो उसके लिए दिया जाता है। उसमें भी जैसे दो, उसमें भी अलग अलग स्कीम है, जो रबी फसल है तो अलग है उसमें, और खरीफ है तो अलग है। खरीफ में थोड़ा सा प्रीमियम 2% देना पड़ता है, जैसे एक बीघा में मान लीजिए आपका 20,000 का फसल लगा हुआ है तो उसका लगभग 400 रुपया का आपका प्रीमियम देना पड़ेगा, और जो रबी फसल उसमें थोड़ा कम देना पड़ता है, 1.5% ही देना पड़ता है। और ऐसे ही है जो आपके जिसे बागवानी फसल है, जिसमें साग सब्जी फल फूल ये सब है, उसमें 5% तक देना पड़ता है, लेकिन उससे सारा आपका फसल सुरक्षित हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक विपदा के कारण से, बाढ़ सूखा किसी भी कारण से फसल खराब होता तो उसमें पूरी आपके आपको पूरा उसका जो है मूल्य आपको मिल जाएगा। तो दूसरा है पीएम किसान मानधन योजना, जनधन योजना, और उसमें किसानों के लिए पेंशन दिया जाता है, एक तो ये है। फिर जैसे मैंने बोला सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसका एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया, प्रति ड्रॉप अधिक उपज, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब आप कैसे पानी को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें जिससे आपका पानी की बर्बादी भी कम हो और आपकी उपज भी बढ़े। जी
0: तो सर, आजकल हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें, और ये अच्छी बात भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे में बहुत सी लागत की परेशानी आती है, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी कोई खास स्कीम है जिसका फायदा किसान भाई बहनों को मिल सकता है?
1: जी मैम, उसमें जैसे है परंपरागत कृषि विकास योजना, आप भाई बंधु आप लोग अगर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो इसके बारे में जानकारी आप उपलब्ध कीजिए, और आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या बैंक में भी आप जाके पता कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करना चाहते हैं उनको कम मतलब सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी मिलता है और उस पे उनको लोन मिलता है जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सभी भाई बंधु इसमें जागरूक मतलब इसके बारे में उनको जानकारी होगी, जो भी आप फसल लगाते हैं उससे पहले आपको अपने मिट्टी में कौन कौन उर्वरक उसमें उपलब्ध है, कमी है ज्यादा है, उसकी पहले जानकारी हो जानी। तो ऐसा होता है कभी कभी देखा गया है जो कुछ उर्वरक तत्व पहले से मौजूद है फिर भी ऊपर से लोग डाले जा रहे हैं तो उल्टा वो लाभ की जगह पर हानि पहुंचाता। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का आप लाभ उठाइए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके तहत जो है लगभग सरकार ने 2,817 करोड़ का बजट इस बार पास किया है। उसके अंतर्गत कोई किसान अगर इसमें डिजिटलाइजेशन ऐप बनाना चाहते, सामान बेचने के लिए जानकारी लेना चाहते तो उसके लिए ये स्कीम है।
0: तो ये कुछ स्कीम्स हैं, अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं जिनका हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं। सर, अगर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहे तो क्या कहेंगे आप?
1: देखिए मेरा आप सभी भाई बहनों से एक निवेदन है, जो इसके बारे में जानकारी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण से, सही जानकारी नहीं होने के कारण से आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो भी ठीक आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है आप या तो किसी विश्वविद्यालय आइए, आप जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ उस पर आप कॉन्टेक्ट करिए हमें, और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके ग्रामीण विकास बैंक है, बैंक जाइए वहां से जानकारी उपलब्ध कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाया है, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जिन भी स्कीम्स के बारे में बताया, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन उन स्कीम्स का सुविधा अनुसार लाभ जरूर लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: किसान भाई बहनों, आज की चर्चा से उम्मीद है कि आपको काफ़ी लाभ होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिला होगा सरकारी योजनाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू 8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G/7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले, तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा। और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए। और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहाँ भी महिलाएं काम कर रही है, वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और ख़ुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीक
4: नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि बोलो

0: കൃഷി. नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 एफएम ग्रीन पर. आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए. तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए. तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे. और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम. और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद. तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए. हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है. और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी. और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में.
1: जी धन्यवाद.
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है. तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है. वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं. तो बिल्कुल आप जान सकते हैं. तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं.
1: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है. ख़ास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है. विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है. साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
0: जी.
1: जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं. और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं
0: जी.
1: वो भी फूलगोभी में ज्यादा पाए जाते हैं. और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं. तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है
0: जी.
1: तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं.
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से. फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं.
1: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी. जी,
1: वो चाहे कोई भी फसल हो. तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं. इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है और पछेती फूलगोभी भी आती है. तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम.
0: अच्छा.
1: तो इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है. तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं. उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है. इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं. और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज़ हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज़ आती हैं. पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी मागी आती है, जाइंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल वन है, पूसा स्नोबॉल टू है, स्नोबॉल 16 है. इस प्रकार की कई वैरायटीज़ हैं.

0: हम बचेती मौसम में लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
1: अच्छा।
0: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपके खेत के हिसाब से कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
1: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
0: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूल गोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
1: अच्छा।
0: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
1: अवशेष,
0: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
1: जी।
0: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं, उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं और जो पिछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं।
1: अच्छा।
0: सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए, और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूल गोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
1: अच्छा।
0: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है,
1: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
0: जी। अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
1: होती है,
0: बढ़ जाती है। तो इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया, और क्यारियों के जो दूरी है एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी, और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए डॉक्टर साहब बताएँ फूल गोभी के लिए।
0: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में, मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा जो एक खरपतवार, जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए, और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में। और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको 2 भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद आपने जब रोपाई कर दिया रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद, मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस के लिए, जो हम फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फॉस्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन। बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना चाहेंगे हम।
0: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं, तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अब अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
0: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
1: बना रहता है
0: वो फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहरी में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है। उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका रंग
1: ताजा
0: तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
1: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
0: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं, और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में दो तीन तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता है। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी।
0: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किसमें उगाए, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए, और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विपटेल।
1: अच्छा,
0: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विपटेल होता है एक मॉलिब्डेनम की कमी से।
1: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विपटेल?
0: विपटेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता।
1: अच्छा,
0: है तो उसको विपटेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहां की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
1: अच्छा,
0: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूलगोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
1: नुकसान पहुंचा,
0: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, अच्छा। या तो फॉर्मल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उससे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें उसके अंदर, बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशु पालकों के लिए सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
3: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
3: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
3: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओ, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
3: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओ, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
3: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
3: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं, लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
2: अच्छा, तो ये बात है।
3: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
2: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
3: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
2: श्रोताओ, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
3: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
2: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
3: और फिर ट्रेन आती है।
2: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
3: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
2: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
3: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
2: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
3: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
2: जी,
3: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
2: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
3: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
2: अजीत जी, वो संदेश है बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
3: जी हाँ मित्रों, ना जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
2: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
3: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
2: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
3: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओं, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
2: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
3: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
3: माला की चांदी की पायल।
4: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
5: अरे माला तू।
4: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
6: बहन जी, डाकिया।
4: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
7: माला, यह तुम्हारे लिए है।
4: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
8: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: आइए,

0: ये कैसे संभव है?
1: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
2: अच्छा
1: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
3: अच्छा।
1: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
2: हाँ, ठीक है।
1: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
3: घंटी भी?
1: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
1: फिर जाओ ना।
4: पहुँच गए? हाँ हाँ,
1: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा।
4: हाँ? जल्दी भेजो।
2: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है!
4: क्या क्या बात है!
2: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है! अरे वाह,
1: सिग्नल मिला।
2: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
5: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
6: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
5: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार, यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे। हाँ। लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।

0: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
1: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: रॉड, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है!
0: पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकरा कर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: अरे ये क्यों हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: जहाज बुरी तरह हिल रहा है।
6: हेडपोर्ट कितनी बड़ी खराब पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर
0: गया। जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर। जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
5: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। सेव टाइटैनिक, निकलो। शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेड लाइट सिग्नल भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्पैच।
5: जल्दी जल्दी करो।
0: जीवन रक्षक नाव के नीचे उतारो। लाइफ बोट उतारो। लाइफ बोट को नीचे उतारो।
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस, टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: पीटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो विश्वास ही नहीं होता। विश्वास नहीं
3: होता। मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा
3: हूँ। गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: Very good.

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
8: कौन सी कहानी टीकी?
7: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
7: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
8: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
7: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
10: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
11: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
12: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
11: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
13: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
11: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
14: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
11: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
15: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
11: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
16: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
17: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
16: और लाइट बिल के।
17: अब 0 रुपए कैसे दूं?
16: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
18: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
19: हर घर सूर्य घर। 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
20: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावना है, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
21: नमस्कार।
20: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
21: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं। बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं। और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
20: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
21: जी जी।
20: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
21: 1 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
0: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
21: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
21: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
0: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
21: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा, एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजीम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके, एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में NPK का जो रेशियो है 75:60:20 है प्रति हेक्टेयर की दर से NPK की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
0: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
21: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
0: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
21: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
0: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
21: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पे हार्वेस्टिंग करते हैं।
0: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
21: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयू सबौर की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
0: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
21: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू 8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?
1: जी ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने मैम कि प्राकृतिक खेती क्यों आन पड़ी है, क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि आज हम जितना चीज़ हम खा रहे हैं वो एक तरह से रसायन से उत्पाद किया हुआ है और वो कहा जाए तो एक जहर है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जहर है। और जहर ये आया कहाँ से? तो जहर आने का मतलब कई कारण है। पहला कारण है कि हम रसायन जो डाल रहे हैं वो मिट्टी में डाल रहे हैं और मिट्टी में हमारा जितना फसल है वो मिट्टी से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि आज चाहे वो गरीब तबके के हो या बहुत बड़े घराने से हो, वो बीमारी को बेच नहीं सकता और अपने स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम। तो प्राकृतिक खेती है अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, खुद आने वाले जो पीढ़ी है उनको बचाने के लिए इसलिए जरूरत है।
0: तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की जरूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिसे जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
1: देखिये रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुन प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते। अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। और बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लिया जी वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज़्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज़्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज़्यादा, वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज़्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है। और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है, जो कि हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए जरूरत है।
0: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं।
1: जी
0: तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
1: देखिए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है। ये हमारे पुराने पद्धति है जो की हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो की गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे चीज को जो है ये जब से ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा बड़ा संसाधन होता था उनमें वो व्यवस्थित करके रखते थे, जो कि अपना ही बीज से वो उत्पाद लेते थे और शुद्ध लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज डंकल प्रस्ताव जब से आया अपने देश में, उनके बाद हमारे देश की कृषि में तो बहुत ज़्यादा मतलब उपज आया, इतना आया कि हम विदेशों को भी दे रहे हैं। लेकिन परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो तो देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं, तो घी ये दही भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को जब हम अपने खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होते हैं, उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा। मैम
0: बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना। तो सर इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पर पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
1: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो हमारा सारा चीज स्वस्थ हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर हम रसायन डाल दिए वहाँ के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा, यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे, इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा। मैम तो वो बढ़ेगा कैसे? तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ठीक है, तो जीवामृत कहाँ से आएगा? तो जीवामृत का घर कहाँ है? तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में। और वो मिट्टी कहाँ है? जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। हम रसायन कहाँ नहीं डाले हैं? तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं, वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं। और वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का सॉइल जीवित है, उसमें अभी भी जीवाणु करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद है। वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले और गाय का मूत्र और बेसन गुड़, ये छोटा छोटा सामग्री है जो कि हम जीवामृत के रूप में बना के मिट्टी में डालते हैं, तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
0: तो सर आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा। तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन पर टिके हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, तो एकाएक आप रसायन को अगर हटा के प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाते हैं तो पहला ईयर में आपका कुछ उत्पाद घटेगा, इसलिए कि उस मिट्टी को रसायन की आदत पड़ गई है। एकाएक अगर हम रसायन को हटाते हैं तो हमारा उत्पाद कुछ घटता है, लेकिन अगर हम लगातार इस पर 3 साल काम करेंगे तो दूसरा ईयर क्या होगा कि हमारा उत्पाद लेवल में आएगा, तीसरा ईयर मेरा वो उत्पाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आप उस इनपुट को जो आप प्राकृतिक खेती के तहत बनाते हैं उनको डालते जाएंगे और फसल चक्र को अपनाएंगे तो आपका उत्पाद घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैम ये है कि आपके फसल में लगने वाले लागत बहुत कम आएगा, क्योंकि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका डीएपी के रूप में घन जीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पर्सन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
2: ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जब मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा लेकिन बाद में वो चीजें हो जाती है मैनेज, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए।
1: थैंक यू मैम।
2: दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
10: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
11: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
10: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरीफ प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
15: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद

0: की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो आसानी से की जा सकती है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
1: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
0: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो आसानी से किया जा सकता है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
1: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
0: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटाश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण

0: में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इससे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के एक हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में एक हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है, इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी हैं। जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं मैम KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है।
10: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है। गेंदा का महत्व बहुत ज्यादा है आज के डेट में। हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफी उपलब्ध है इसके लिए।
9: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
10: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों के गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार की डिमांड पे, मांग पर, इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा दिवाली छठ ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
9: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
10: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धित प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पूसा अर्पिता है, पूसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बैंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं, और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं तो उनके पास अपना पौधा रहेगा, और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए, बालू की मात्रा रहनी चाहिए, क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है, अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे, और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे, और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे। और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
9: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
10: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6-7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है, और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उनसे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है, 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं, तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4 × 4 = 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है, और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें
11: जी मैम।
10: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है। लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं और सबसे बड़ा कमजोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में कि यहाँ का जो बाजार है, भागलपुर का जो बाजार है, फूलों का बाजार कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाजार पर कलकत्ता के ही बाजार का कब्जा था और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है। लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। और जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है
11: जी मैम। अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
10: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें। क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है। और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसके लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है और वो अरका भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र। और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
11: जी मैम
10: और वो उसको करना प्रारंभ कर दें। और पैसे की कमी नहीं है इसमें
11: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाज़ार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए। और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: थैंक यू उमा।
11: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
12: उन्नत कृषि,
13: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
13: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
16: कौन सी कहानी टीकी?
15: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
17: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
15: शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
12: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
15: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
12: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
17: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
18: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
19: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
18: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
9: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू 8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: For improvement criteria, it says easily distracted. 2. Mudra and pranayama. There is a table given in which there are 4 different columns and 3 different rows. First column heading says criteria. Second column heading says excellent. Third column heading says good. And fourth column heading says scope for improvement. The first row says om chanting, and under excellent criteria it says rhythmic. Under good criteria it says requires minor corrections. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. Row 2 says identification and demonstration of mudras. Under excellent it says identifies and performs. Under good it says can identify but difficult to perform. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. Row 3 says identification and demonstration of different pranayama. Under excellent it says identifies and performs. Under good it says can identify but difficult to perform. Under scope for improvement it says requires repeated guidance. This marks chapter 7 Yoga Sadhana, the ending of unit number 3.
1: Khel Yog. You were just listening to this audiobook, textbook of physical education and well-being for class 5. Narration, Meha Kheda. Sound recordist, Manju Kumari. Assistance in production, Jagbandhu Jana.
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो. नाटक देखो, नाटक देखो.
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे. हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ. इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा.
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं. अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है.
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई.
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय.
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है.
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक.
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
4: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ.
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं.
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी.
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं.
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं.
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ. बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात. अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी. UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ.
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य.
9: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें.
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब. कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक

0: खादों से मुक्त।
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ के खास कार्यक्रम, जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की, और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें। जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएं। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।
8: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
8: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से, लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे। जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फाल्स मट की जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्णंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पे भूरा धब्बा आ जाता है, साथ ही साथ जो है इसमें शीत ब्लाइट होता है
0: जी।
8: शीत ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है।
0: अच्छा।
8: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं। किसान भाई जानते होंगे कि जिंक की कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक की कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फाल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पर वो चीज़ लग जाता है।
0: अच्छा।
8: और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है, तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते
0: जी।
8: इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फाल्स मट या कलिया बीमारी पे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है। इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें। अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए।
8: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूँ तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं तो उस कारक को आपको मारना होगा। अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
0: खुद ब खुद मर जाएगा।
8: जी अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है
0: बिल्कुल,
8: तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त क्योंकि खेत आपका खाली होगा तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
0: अच्छा।
8: और धूप लगने के कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं
0: गहरी जुताई से।
8: जी
0: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
8: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
0: अच्छा।
8: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं बीज खरीदते हैं फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है जो सुगंधित धान है उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो 2 फफूंद नाशक है उसमें 1 फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो बाद के अवस्था में भी जो पौधा आपका बड़ा हो जाता है तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में बिचड़ा लगाएं।
0: एक जो सवाल है किसान भाइयों की तरफ से आता है डॉक्टर साहब कि कम पानी और अधिक पानी की स्थिति में कौन से रोग लगते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान।
8: जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है जिसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता है,
0: अधिक जमा हो जाता है। जी,
8: तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से दो बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्रायः बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती की, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप, उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमार, जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में दो बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है जिसको कि पर्णअंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंद नाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया शीत ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था शीत ब्लाइट के बारे में
0: जी।
8: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो शीत रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पर ये सांप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी, एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए, शीत ब्लाइट के बचाव करने के लिए आप वेलिडामाइसिन का आप जो है, अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
9: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
10: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
9: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी भी हारेगा, देश जीतेगा।
11: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
12: कौन सी कहानी टीकी?
11: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
13: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
11: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
12: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
11: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
14: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
15: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, और साथ ही स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अंग उमंग में। जी हां, हम किसानों के लिए बहुत सारे चर्चाएं लेकर आते हैं, लेकिन जब हमारे किसान बंधु हैं, हमारे किसान भाई बहने हैं, और उनके लिए साथ ही कृषि में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उनसे जुड़ी लोकगीत ना हो तो ये थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा। हमारे स्थानीय कलाकार साथ ही यहाँ पर मुख्य गायक हैं रविंद्र रामपुरी जी, और इनका साथ देने के लिए हैं ताराकांत ठाकुर जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, साथ ही पंडित रघुनंदन जी। आइए सुनते हैं।

0: अभी आपने एक बहुत ही मधुर कृषि गीत सुना और इसके बाद एक और खास कृषि गीत, और इसमें आप सुनेंगे कि क्या दिनचर्या होती है किसानों की। इस लोकगीत के द्वारा हम पेश करते हैं हमारे किसान बंधुओं की दिनचर्या। आइए सुनते हैं हमारे मुख्य गायक ताराकांत ठाकुर जी, इनके साथ हैं बम बम जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, पंडित रघुनंदन जी और रविंद्र रामपुरी जी।
1: सुबह उठते ही किसान कैसे खुश हो जाता है, कैसे अपने हल बैलों को खिला पिला के तैयार कर लेता है, कैसे अपने घर वाली को, घर के बाल बच्चे को खेत पे आने के लिए कहते हैं, और वो किस तरह से परेशान रहते हैं और उस परेशानी में क्या खुशी मनाते हैं। आइए हम इस लोकगीत के माध्यम से आपको सुनाते हैं।

0: इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर ग्रामीण जीवन का एक दृश्य है वो ज़रूर आया होगा। लोकगीत की एक यही विशेषता होती है कि ये अपने आप में सारे विश्व को, चाहे वो गांव से लेकर शहर हो, हर संस्कृति को समाये रखता है। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए अंग उमंग कार्यक्रम। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G के 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन के बारे में। सघन बागवानी क्या होती है और अगर सघन बागवानी करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही छत्रक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे आम के पौधों के लिए, पेड़ के लिए फायदेमंद होता है, इस बारे में आज विस्तार से जानेंगे डॉक्टर कुमारी करुणा से। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सघन बागवानी क्या है।
1: हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सघन बागवानी जो है एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम दूरी पर और कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित जमीन और कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले फलों या सब्जियों का उत्पादन प्राप्त करना है।
0: जी मैम, तो मैम अगर हम सघन बागवानी की बात करते हैं तो क्या सघन बागवानी करने से कुछ फायदे होते हैं?
1: हाँ, कम जमीन में कई गुना अधिक पैदावार मिलती है इसको सघन बागवानी करने से, और फलों का आकार एवं गुणवत्ता भी अच्छा हो जाता है। तुराई हो, सिंचाई हो एवं देखरेख करना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पौधे के साइज को मेंटेन किया जाता है, छोटा रखा जाता है, तो जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। साथ ही साथ किसानों की आय पारंपरिक खेती की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सघन बागवानी की विशेषताएं क्या हैं और इसे क्यों करना चाहिए?
1: सघन बागवानी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो इस पद्धति में मजदूर भी कम लगता है क्योंकि पौधा को छोटा रखा जाता है जिससे पौधे पर किया जाने वाला कार्य आसानी से हो जाता है। इस पद्धति में पूरे जमीन का सही सही उपयोग हो जाता है। सघन बागवानी में जैसे खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, फफूंदनाशी, कीटनाशी इत्यादि का लगभग पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है जिससे कि परंपरागत बागवानी की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस बागवानी को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक होती है और हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक फलों की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ खेती एवं बाग लगाने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके चलते कि जमीन थोड़ा सा कम होते जा रहा है। अगर हम इस पद्धति से बागवानी करेंगे तो जो मेरी बढ़ती जनसंख्या का डिमांड है फल और सब्जी का वो मिल पाएगा।
0: जी मैम। मैम, अगर हम सघन बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई बहन तो क्या उसमें कुछ विशेष किस्म होते हैं जिनका चयन करना चाहिए?
1: हाँ, सघन बागवानी के लिए ये होता है कि सभी का स्ट्रक्चर, पौधा हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, थोड़ा अलग अलग होता है। कोई अधिक ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है, तो इसमें भी पौधा में भी आम में भी कुछ बौना किस्म होते हैं तो उसको प्रीफर करते हैं सघन बागवानी के लिए। इसमें वैरायटी की बात करें तो है आम्रपाली, जैसे इसको किचन गार्डन के लिए भी सूटेबल माना गया है क्योंकि इसमें ग्रोथ कम होता है, कम स्पेस लेता है, तो आम्रपाली लगा सकते हैं सघन बागवानी में। मल्लिका का भी थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा ही है, पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिका है, पूसा श्रेष्ठ है, ये सब का जो ढांचा होता है पौधा का वो थोड़ा छोटा होता है, इसको प्रीफर कर सकते हैं सघन बागवानी के लिए।
0: जी मैम। मैम, क्या सघन बागवानी करने के लिए भूमि की कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है और पौधरोपण कैसे करते हैं?
1: भूमि की तैयारी के लिए कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो परंपरागत बागवानी के लिए जो तैयारी होती है पौधा लगाने का, वही तैयारी इसमें भी की जाती है। सिर्फ पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी जब हम रेखांकन करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितना रखें
0: जी।
1: तो एक आम के लिए अगर सघन बागवानी करनी है तो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 5 मीटर बाय 5 मीटर है। और पौधा लगाने के लिए जो गड्ढा बनाएंगे तो उसमें 60 घन सेंटीमीटर का गड्ढा मई के महीने में खोदकर उसको फिर मानसून आने से पहले 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 50 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर भर देना चाहिए। पौधरोपण के लिए आम के लिए पौधा से पौधा की दूरी, और ये जो उच्च गुणवत्ता वाला पौधा जो होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसे किसी विश्वसनीय पौधशाला या शोध संस्थान से ही लेना चाहिए। फिर उन्हें जुलाई के मध्य तक सावधानीपूर्वक तैयार गड्ढों में विधिवत रोप देते हैं और रोपने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं।
0: जी मैम, अब आप हमें सिंचाई के बारे में विस्तार से बताइए कि सिंचाई कैसे करनी चाहिए।
1: हाँ, अगर हम सिंचाई प्रथम 2 वर्षों तक आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, जब लगे कि हाँ पौधे को आप जरूरत है पानी का, तो उसको 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि 2 साल के पौधे बहुत छोटे होते हैं 2 साल तक, तो उसका बहुत प्रॉपर केयर करना पड़ता है, कब उसे पानी की आवश्यकता है किसान भाई को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद जब बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसको परंपरागत तरीके से अगर हम सिंचाई करें तो ठंडा में यानी जाड़े में 15 दिन के अंतराल पर और गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। और अगर सूक्ष्म सिंचाई द्वारा हम पानी अगर देते हैं तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी पौधा को देना चाहिए, उससे पानी का बचत भी होता है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: जी मैम। मैम, अब हम छत्रक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, तो सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: सघन बागवानी में प्रारंभिक कटाई छटाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। पौधरोपण के 1 वर्ष बाद मुख्य तने को भूमि के सतह से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर से दिसंबर जनवरी में काटते हैं। तनों की कटी सतह पर फफूंदनाशक दवा का पानी में या अंडी के तेल में घोल बनाकर अच्छी तरह लगाना चाहिए। कटाई के बाद तनों पर अप्रैल से बहुतायत में कल्ले निकलते हैं, जिनमें से केवल 4 कल्लों को चारों दिशाओं में बढ़ने देते हैं। शेष कल्लों को यथाशीघ्र काट देना चाहिए। फिर इन्हीं कल्लों को पुनः 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काटते हैं। इन 4 कल्लों को चारों कल्लों से पुनः 2 से 3 कल्लों का सृजन होने देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 वर्ष में पौधे का वांछित छतरीनुमा आकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पेड़ में जुलाई में निकले लगभग 80% शाखाओं में मंजर आ जाता है, फलस्वरूप अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। 10 वर्ष बाद पौधे से लगभग 10 से 12% टहनियाँ, जैसे सूखी टहनियाँ हो या रोगग्रस्त टहनियाँ हो, तो प्रतिवर्ष निकालते रहना चाहिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिले और स्वस्थ कल्लों का सृजन हो सके। इस प्रकार पौधों का सामयिक प्रबंधन करके 20 से 25 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण भरपूर फलन ली जा सकती है।
0: जी मैम, अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो 20 से 25 वर्ष तक अच्छे फल मिल सकते हैं हमें। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से आम की सघन बागवानी करें और सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो हमारे किसान भाई बहन जो बागवानी करते हैं, आप मैम की बातें जो मैम ने बताई है उन बातों का ध्यान रखिए, और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे फल आएंगे, गुणवत्ता युक्त फल आएंगे और अधिक फल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फॉस्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फॉस्फोरस कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से सस्य फसलों के लिए और बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
2: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है और हमारी जो बिहार की किसान है उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: तो मैम, फास्फोरस क्या है अब ये बताइए।
2: जी, फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है अगर आप सुने होंगे एटीपी, एडीपी, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फास्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। तो फास्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फास्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम, सस्य फसलों में अगर हम फास्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है?
2: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है। यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फॉस्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फॉस्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फास्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
2: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा की, गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग, हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 to 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्ग होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 to 20 or 30% तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 to 20% यानी 15 to 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल, अगर हम बोले कि बिहार की सॉइल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 to 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
2: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसकी, इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर हैं जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फास्फोरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फास्फोरस के केस में है, जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फास्फोरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई

0: को हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्योर, जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्योर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए, उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस की, वो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है। तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी, चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक फिर क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फॉस्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो। तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे, ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
1: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
0: जी जरूर। फॉस्फोरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग, मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
1: थैंक यू मैम। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, ख़ास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू वेरी मच उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, कई बार किसान भाई बहनों को मौसम की वजह से या कोई अनेक वजहों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनके पास लागत की भी कमी होती है। और हमारे ऐसे कई सारे किसान भाई बहन हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते। हमारी आज की चर्चा का विषय यही है, कृषि विकास के लिए सरकारी योजनाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसे मैम ने कहा, कृषि में जो सबसे आजकल हमारा फसल, जब फसल बहुत ख़राब हो रहा है बाढ़ के कारण से, सूखा के कारण से, और भी बहुत सारे इस तरह के सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए बहुत सरकारी योजनाएं हैं जिससे भाई किसान भाई बंधु लाभ उठा सकते हैं। और इसकी जानकारी थोड़ा बहुत तो है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से बहुत सारे किसान भाई बंधु उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनको कहां से वित्तीय सहायता मिलेगा? बहुत सारे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, तो जानकारी के अभाव में वो लोन नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे स्कीम के बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती, तो आज उसी पे थोड़ा बात करेंगे।
0: सर, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठा सकते हैं।
1: देखिए, बहुत तरह के हैं, जिसमें पहला जो है आय एवं ऋण सहायता। जो कोई भी आप छोटे और जो छोटे सीमांत किसान है उनको आय बढ़ाने के लिए, उनको लोन देने के लिए बहुत सारे स्कीम है। दूसरा जो सबसे मेन है, जो जैसे आजकल बहुत रिस्क है, फसल तैयार है, देखिए इसी बार आम लीची के फसल बहुत खराब हुआ, गेहूं का फसल बहुत खराब हो गया, ऐसे मतलब बेमौसमी जो बरसातें हुई, फिर कभी सूखा पड़ जाने के कारण से, कभी बाढ़ पर, तो उसके लिए जो है जोखिम सुरक्षा योजना, जिसको आप लोग जानते होंगे, फसल बीमा योजना है। फिर उसके बाद सिंचाई के लिए है, फिर और भी बहुत सारा आप में उसमें जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पॉली हाउस बनाना है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इस सब के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे योजनाएं हैं।
0: यस सर, तो सर हम शुरुआत करते हैं लोन के लिए कौन कौन से योजनाएं हैं इसके साथ। तो लोन के लिए कौन कौन से,
1: देखिए सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री किसान योजना, उसमें जो है छोटे और सीमांत किसानों को, सब आजकल सभी भाई बंधु इससे पूर्ण रूप से मतलब इसका जानकारी होगा उनको। आजकल सरकार जो है 6,000 रुपये सालाना उनको 3 किस्तों में 2,000 रुपया उनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे अहम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। आप लोग अपने अपने नज़दीकी बैंक में जाके, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ जाके, नहीं तो हमारे अपने कृषि विश्वविद्यालय आके जानकारी इसका प्रदान मतलब ले सकते हैं, कहाँ से ऐसे इसको, कहाँ किन से मिलेंगे, कैसे इसका हम कहाँ अप्लाई करेंगे जिससे हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिल पाए। किसान क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी क्या है, जैसे आपको तुरंत यूज है, तुरंत आपको नीड है, आपकी आवश्यकता पड़ गई, जो कल ही 5,000 रुपया निकालना है, तो आप बैंक तो 5,000 तुरंत आपको लोन देगी नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं जैसे दूसरे कार्ड से निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है जिसमें जो ऋण दर बहुत कम है, अगर आप समय से चुकाते हैं तो 4% ही देना पड़ता है, तो एक तो वो है। दूसरा जो है AIF बोलते हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी जो भंडारण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, लगभग उसमें मतलब आप करोड़ों रुपया तक का उसमें फंड ले सकते हैं।
0: यस सर, तो अभी हमने लोन के बारे में बात की और अभी आपने बताया कि फसल बीमा योजना भी है
1: जी,
0: किसानों को मौसम की वजह से नुकसान।
1: बिल्कुल
0: वो कौन कौन से?
1: उसमें जो है सबसे प्रमुख तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें प्राकृतिक विपदा, कीट, बीमारियों से फसल अगर खराब हो रहा है तो उसके लिए दिया जाता है। उसमें भी जैसे दो, उसमें भी अलग अलग स्कीम है, जो रबी फसल है तो अलग है उसमें, और खरीफ है तो अलग है। खरीफ में थोड़ा सा प्रीमियम 2% देना पड़ता है, जैसे एक बीघा में मान लीजिए आपका 20,000 का फसल लगा हुआ है तो उसका लगभग 400 रुपया का आपका प्रीमियम देना पड़ेगा, और जो रबी फसल उसमें थोड़ा कम देना पड़ता है, 1.5% ही देना पड़ता है। और ऐसे ही है जो आपके जिसे बागवानी फसल है, जिसमें साग सब्जी फल फूल ये सब है, उसमें 5% तक देना पड़ता है, लेकिन उससे सारा आपका फसल सुरक्षित हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक विपदा के कारण से, बाढ़ सूखा किसी भी कारण से फसल खराब होता है तो उसमें पूरी आपके आपको पूरा उसका जो है मूल्य आपको मिल जाएगा। तो दूसरा है पीएम किसान मानधन योजना, जनधन योजना, और उसमें किसानों के लिए पेंशन दिया जाता है, एक तो ये है। फिर जैसे मैंने बोला सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसका एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया, प्रति ड्रॉप अधिक उपज, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब आप कैसे पानी को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें जिससे आपका पानी की बर्बादी भी कम हो और आपकी उपज भी बढ़े। जी
0: तो सर, आजकल हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें, और ये अच्छी बात भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे में बहुत सी लागत की परेशानी आती है, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी कोई खास स्कीम है जिसका फायदा किसान भाई बहनों को मिल सकता है?
1: जी मैम, उसमें जैसे है परंपरागत कृषि विकास योजना, आप भाई बंधु आप लोग अगर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो इसके बारे में जानकारी आप उपलब्ध कीजिए, और आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या बैंक में भी आप जाके पता कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करना चाहते हैं उनको कम मतलब सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी मिलता है और उस पे उनको लोन मिलता है जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सभी भाई बंधु इसमें जागरूक मतलब इसके बारे में उनको जानकारी होगी, जो भी आप फसल लगाते हैं उससे पहले आपको अपने मिट्टी में कौन कौन उर्वरक उसमें उपलब्ध है, कमी है ज्यादा है, उसकी पहले जानकारी हो जानी। ऐसा होता है कभी कभी देखा गया है जो कुछ उर्वरक तत्व पहले से मौजूद है फिर भी ऊपर से लोग डाले जा रहे हैं तो उल्टा वो लाभ की जगह पर हानि पहुंचाता। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का आप लाभ उठाइए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके तहत जो है लगभग सरकार ने 2,817 करोड़ का बजट इस बार पास किया है। उसके अंतर्गत कोई किसान अगर इसमें डिजिटलाइजेशन ऐप बनाना चाहते, सामान बेचने के लिए जानकारी लेना चाहते तो उसके लिए ये स्कीम है।
0: तो ये कुछ स्कीम्स हैं, अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं जिनका हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं। सर, अगर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहे तो क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मेरा आप सभी भाई बहनों से एक निवेदन है, जो इसके बारे में जानकारी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण से, सही जानकारी नहीं होने के कारण से आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो भी ठीक आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है आप या तो कृषि विश्वविद्यालय आइए, आप जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ उस पर आप कॉन्टेक्ट करिए हमें, और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके ग्रामीण विकास बैंक है, बैंक ये वहां से जानकारी उपलब्ध कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाया है, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जिन भी स्कीम्स के बारे में बताया, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन उन स्कीम्स का सुविधा अनुसार लाभ जरूर लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: किसान भाई बहनों, आज की चर्चा से उम्मीद है कि आपको काफ़ी लाभ होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिला होगा सरकारी योजनाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 2 से 6 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU8, बाकुला इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही कमजोर मानसून को देखते हुए वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी जाती है। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में चावल में खरपतवार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगे हैं उन्हें बता दें, मक्का में तना छेदक का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी करते रहें। तना छेदक से प्रभावित पौधों में मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G/7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जिनके खेत में अरहर यानी कि लाल चना लगा हुआ है उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी अभी कर लेनी चाहिए। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, गोभी की पूसा हिम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्में की बुआई कर ले और 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनिया मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका, HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके पीने के लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों एवं पशुपालकों के लिए एक सामान्य सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल फल झड़ सकते हैं और साथ ही कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों और बागवानी फसलों का विशेष ध्यान रखें और पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए पशुओं का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे ज़रूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुँचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले, तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचें, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहाँ भी महिलाएं काम कर रही है, वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोष की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोष की ट्रेनिंग में बताया जाता है और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोष की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
0: नमस्कार, मैं RJ अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 FM ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
12: जी धन्यवाद।
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
12: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। खास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
0: जी,
12: जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूलगोभी में ज्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है
0: जी।
12: तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
12: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी जी।
12: वो चाहे कोई भी फसल हो, तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है और पछेती फूलगोभी भी आती है। तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम,
0: अच्छा,
12: तो इसी के इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है। तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज़ हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज़ आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी मागी आती है, जाइंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल वन है, पूसा स्नोबॉल टू है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज़ हैं जो हम पछेती मौसम में लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
12: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
0: अच्छा।
12: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं, और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं, और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपके खेत के हिसाब से, कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
0: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
12: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूल गोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
0: अच्छा।
12: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
0: अच्छा।
12: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
0: अवशेष
12: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
0: जी।
12: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं। उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए। और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है, वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं। सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए। और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए। और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
0: अच्छा,
12: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
0: मतलब
12: तैयार होती है,
0: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
12: जी, अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं। तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
0: होती है,
12: बड़ी बढ़ जाती है। तो इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए।
12: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती। तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज्यादा होती है।
0: अच्छा।
12: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में मुख्य खेत में डालना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
12: और इसके अलावा जो एक खरपतवार जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने

0: उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फॉस्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन। बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
0: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
0: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
1: है
0: फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है, उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका रंग ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
1: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को।

0: और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
1: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में दो तीन तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
0: अच्छा।
1: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किसमें उगाए, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विपटेल।
0: अच्छा।
1: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विपटेल होता है एक मॉलीबिडनम की कमी से।
0: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विपटेल?
1: हाँ, विपटेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है।
0: अच्छा।
1: तो उसको विपटेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहां की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
0: अच्छा।
1: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
0: अच्छा।
1: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूलगोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
0: नुकसान पहुंचा,
1: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं, 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, अच्छा। या तो फॉर्मल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उसे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें। इस